0: आज के दिन।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के सेगमेंट की ओर चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की। दोस्तों माना जाए तो किसी भी देश की जो जमीन है ना, वो इतिहास किसी भी राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता को खुद में समेटे है। हमारे देश का इतिहास गर्व और गौरव का स्तंभ है। इतिहास जय पराजय की गाथा है इतिहास, और अतीत को सजोए रखने वाला है इतिहास। तो दोस्तों हम ऐसे इतिहास को आपके साथ साझा करते रहें, यही हमारी कोशिशें रहती हैं। 22 सितंबर को कई महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं घटीं जो देश और विश्व के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो वो कौन सी घटनाएं हैं, आइए साझा कर लेते हैं। 22 सितंबर को 1692 में सलीम डायन परीक्षणों में जादू टोने के आरोप में अंतिम फांसी इसी दिन दी गई थी, जो सामूहिक उन्माद और अन्याय के खतरों की एक भयावह याद दिलाती है। दूसरी ओर 1792 में इसी दिन फ्रांसीसी प्रथम गणराज्य की घोषणा हुई, जो लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्वाव्यायी युद्ध को समाप्त करने वाली बेसल संधि पर 22 सितंबर 1499 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने स्विट्जरलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। इसके अतिरिक्त मुक्ति घोषणा पत्र, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 लाख से अधिक गुलाम लोगों की स्थिति को बदल दिया, अब्राहम लिंकन द्वारा 22 सितंबर 1862 को प्रारंभिक रूप से जारी किया गया था। तो दोस्तों ये घटनाएं हमारे ऐतिहासिक महत्व को याद दिलाती हैं। इसके अलावा आज के दिन कुछ खास दिवस मनाए जाते हैं। हॉबिट दिवस J.R.R. टॉल्किन की काल्पनिक दुनिया के प्रशंसकों द्वारा मनाए जाने वाला यह दिवस हॉबिटस बिल्बो और फ्रोडो बैगिंस के जन्मदिन को चिन्हित करता है। इसके अलावा ये दिवस दोस्तों हाथी सम्मान दिवस है। यह दिन इस शानदार जीव को सम्मान देने और उसके संरक्षण के महत्व को पहचानने का दिन है। दोस्तों इसके अलावा एक और खास दिन मनाया जाता है, उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन पहले तो सुनवाऊंगी मैं गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, आज एक और ख़ास दिन है, और वो ख़ास दिन क्या है ये आपके साथ हम साझा करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, यह आज है विश्व गैंडा दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन गैंडों के संरक्षण और आवास के नुकसान और अवैध शिकार के कारण उन्हें होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित ये दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, विश्व गैंडा दिवस यानी वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम बताएंगे, ये आपको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हाथी सम्मान दिवस है, आज विश्व गैंडा दिवस है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आपसे पूछूँ। मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई कि यदि हम सभी पशुओं को प्रेम करते हैं, सभी जीवों को प्रेम करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक फेवरेट चॉइस होती है, जी हाँ, कि हम इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये यदि काश मेरे पास होता तो इतना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, ये मेरे साथ एक दोस्त की तरह होता। जी हाँ दोस्तों, बात बस इतनी सी है, बात यही है कि यदि किसी पशु को, किसी जीव को यदि एडॉप्ट करने के लिए आपको कहा जाए, तो वो कौन सा जीव होगा, वो कौन सा पशु होगा जिसे आप अपने पास रखना चाहेंगे, उसकी देखभाल करना चाहेंगे, या फिर कोई बड़ा पशु है उसको आप एडॉप्ट करना चाहते हैं जू में। जैसे कि अभी फ़िलहाल में ये चल भी रहा है कि सरकार भी आपको एडॉप्टेशन के लिए अलाउ करती है, और आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसकी संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए उसके खान पान की, उसके रहने की, उसकी हर तरह से सुरक्षा की सुविधा मुहैया करा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था भी आजकल चल रही है। तो आप वो कौन सा जीव होगा जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे। मेरे साथ बात करते करते जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो हम फ़ोन कॉल लेंगे। हेलो।
1: हेलो, सुप्रभात।
0: सुप्रभात जी, बताइए आपका नाम। वैसे मैं आपका नाम पहचान चुकी हूँ।
1: अच्छा
0: जी,
1: जलगिरिया से शुभ जी।
0: शुभ जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं
1: जी। मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, और जब मैं सुना कि आप आई हैं प्रोग्राम करने, तो मुझे लगा कि मैं ऑफिस जाने से पहले एक बार कॉल में बात कर लूंगी, क्योंकि बाद में लाइन इतना बिजी हो जाता है, तो चिंता नहीं है।
0: सही बात है, और फिर हम लोगों को एक श्रोता से फिर हमारी बात नहीं हो पाती है ना, यदि फोन लाइंस नहीं मिलती है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनसे बात नहीं हो पाती। तो बताइए क्या बताना चाहेंगे आप इस विषय में।
1: आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है जो भी एनिमल लवर है
0: जी,
1: हम लोग में से बहुत सारे हैं जो एनिमल लवर है, वो आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो सब को कहीं ना कहीं निभाना चाहिए अगर संभव हो तो। मेरे ख्याल में जो पहला जो पेट आता है जो मैं लेना चाहता हूँ वो है डॉग, एक लैब्राडोर या फिर कोई जर्मन शेफर्ड ऐसा। तो मुझे लगता है डॉग इज ऐसा एनिमल है जो सबसे वफादार, क्योंकि एक ऐसा जानवर जिसके साथ आपका लगाव कुछ अलग ही है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो चीज है, मतलब आप डॉग के साथ कनेक्ट कर सकते हो
0: बिल्कुल,
1: और वो लोग मतलब ऐसा है, जितने भी मैं वीडियोस देखता हूँ जिनके पास भी पेट है, पेट डॉग है, एक अजीब सा, मतलब मेरे मेरे घर में तो नहीं, लेकिन मेरे चाचा के घर में एक एल्सेशियन था, जो मतलब जब भी चाचा ऑफिस से आते थे उसको पता है कि वो वार्डरोब से खुद निकालता था उसका उनका कपड़ा उनको देते थे। तो ये अजीब है, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जहां इंसान अपना स्वरूप दिखाता है टाइम के हिसाब से, डॉग विल नेवर डू दैट। आज आप जब उसको एडॉप्ट करेंगे, वो जैसा है, उसका स्वभाव जैसा है, उसका उसके मन में जो चिंतन है, क्योंकि वो भी तो सोचते हैं ना,
0: बहुत इमोशनल होते हैं
1: हमेशा। हाँ, बहुत इमोशनल, और चाहे वो इंसान कैसा भी उसको ट्रीट करे, लेकिन मुझे लगता है वो डॉग ऐसा है कि वो वापस आपको वही प्यार देगा जो वो पहले देता था
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि हम लोग जानते हैं स्ट्रीट डॉग्स जो है, हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगर मेरा अगर संभव हो, मेरा अगर ऐसा लॉजिस्टिक्स हो घर पे, तो मैं एक लैब्राडोर के साथ एक स्ट्रीट डॉग भी लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सबसे नेग्लेक्टेड एनिमल स्ट्रीट डॉग्स हैं।
0: और मैं आपको बताऊं शुभजीत जी कि मैंने दिल्ली में कई आसपास के घरों में देखा था कि लोग वहाँ स्ट्रीट डॉग को अपने घर में एज अ पेट रखते हैं। वो लोग ऐसे बाहर से खरीद के लेके नहीं आते, बल्कि वो ऐसे ले आते हैं और उनको पेट की तरह से बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छे से रखते हैं। तो इस तरह से उनको भी सुविधा होती है, आप जो दूसरे लेके आ रहे हैं पैसा दे करके, यहाँ आप बिना पैसे लिए ले रहे हैं और उनकी देखभाल भी कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी।
1: और आप एक चीज नोटिस करेंगे, उन दोनों में का दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि आप जो फॉरेन ब्रीड लेते हैं ना, फॉरेन ब्रीड के साथ इंडियन ब्रीड का एक ही है कि इंडियन ब्रीड में अलग ही वफादार का आपको नेचर मिलेगा।
0: अच्छा,
1: मतलब आप दोनों को सेम वाइज एडॉप्ट की, सेम वाइज उसको ब्रिंग अप कीजिए, लेकिन आपको इंडियन ब्रीड जो स्ट्रीट डॉग है वो आपको सबसे ज्यादा मतलब कनेक्ट करेगा अपने मास्टर के साथ।
0: जी जी जी
1: हाँ।
0: तो ये...
1: और एक फनी चीज बता दूं, कि अगर मुझे ऐसा, मैं ऐसा जगह में, अगर मैं ऐसा कंट्री में रहता जहाँ पर बहुत ठंड है, तो मुझे पेंगुइन बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब वो चलते हैं तो लगता है कोई बच्चा चल रहा है।
1: एकदम एकदम
0: बहुत
1: तो ख्याल में वही आया कि एकदम
0: जी एक मैम। तो आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी जो संवेदनाएं थी, जो अपनी मतलब भावनाएं थी, वो हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। और ये इमोशनल टॉपिक लेने के लिए शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।

0: जी हाँ दोस्तों, तेरी मेहरबानियाँ। हमारे जो एनिमल्स हैं वो हम पर कितने मेहरबानी करते हैं ये तो हम तभी जान सकते हैं जब हम उनके नज़दीक होते हैं। हमारे एक कॉलर ने बताया कि वो चाहते हैं कि उनके पास यदि पेट होता तो एक डॉग होता या फिर पेंगुइन होता। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सविता जी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताइए।
1: मैं मुनीरुद्दीन बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांकरा इलाहाबाद से।
0: जी मुनीरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बोलिए
1: कि पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए
0: जी,
1: और इतना अच्छा टॉपिक लाने के लिए
0: जी। आपको टॉपिक पसंद आया और गाने अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। क्योंकि कार्यक्रम यदि आप लोगों को पसंद आता है ना तो फिर हमको खुशी और ज़्यादा मिलती है, पता है।
1: ओके मैम,
0: बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: देखिए, डॉग तो हर आदमी अडॉप्ट करता है, यह खास बात नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा एनिमल एडॉप्ट करना चाहता हूँ, रैबिट है।
0: रैबिट, बिल्कुल।
1: हाँ, वो जो छोटा सा है लेकिन उसका जो बॉडी का लोम है वो बहुत प्यारा सा है। मेरे लिए वो बहुत खास है।
0: तो आपके पास था क्या वो पहले?
1: हाँ, पहले था और फिर कोशिश करता हूँ वो प्यारा सा रैबिट एडॉप्ट करने के लिए
0: जी। और वो कुछ करता भी नहीं है, पता है, बस इधर उधर पूरे घर में फुदकता रहता है। और हाँ,
1: लेकिन वो हमारे फैमिली के मेंबर की तरफ रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और लोग को आनंद देता है।
0: बिल्कुल आनंद देता है। और उसकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं, लाल रंग की ना।
1: हाँ, वो शांत है लेकिन वो प्यारा सा है।
0: हाँ, और मैं आपको बताऊं कि मनोरुद्दीन जी, मेरे पास भी एक बहुत छोटा सा रैबिट आया था और फिर काफ़ी बड़ा हो गया, तब तक वो मेरे पास रहा। तो और मैं अपनी बेटी को जब पढ़ाती थी तो वो मेरे पीछे आके बैठ जाता था, तो उसकी वो जो
1: खुशिया की बात है।
0: तो और कई बार वो एकदम नीचे कोने में पलंग के नीचे घुस के बैठ जाता था छिपकर। हम खोजते कहाँ गया चीकू, कहाँ गया हमका, उसका नाम था चीकू। हाँ, और फिर खोजते थे, अरे वो पलंग के नीचे घुस के बैठा हुआ है। और
1: इसका पाला कितना चार्मिंग है, कितना अच्छा है, वो जो एडॉप्ट करता है वही जानता है।
2: Welcome to all our listeners, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ongoing Asian Games 2026 के live updates के साथ। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त अभिनव कुंशी, और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए सुबह 11:30 बजे का अपडेट। सबसे पहली जो न्यूज मैं आपको देने वाली हूँ वो है बैडमिंटन की दुनिया से। कोई अच्छी खबर तो लेकर नहीं आ रही हूँ, लेकिन निराशाजनक खबर ही आपको दूंगी कि भारत का बैडमिंटन के अंदर का जो सफर है वो आज आकर समाप्त हो गया। जी हाँ, हम जापान से 3-1 से हार गए और इसके साथ ही साथ क्वार्टर फाइनल्स के आगे हम प्रवेश भी नहीं कर पाए। भारत की तरफ से पीवी सिंधु का जो पहला मुकाबला था उन्होंने जापानी ओपोनेंट अकाने यामागुची से वो 23-11, 18-11, 11-21 से हारी। उन्नति हुडा लॉस्ट तुमोका मियाजाकी आल्सो 16-21, 18-21। और फाइनली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद बुलेला भी उन्होंने जो था उन्होंने भलाई हराया था यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोता को 21-17, 21-16 से। एक लौटी जो हम कहेंगे जीत इसके अंदर भारतीय खिलाड़ी को मिली, लेकिन वो जीत अपने आप में काफी नहीं थी क्योंकि एक गेम था जो इन दोनों ने हमारे लिए जीता। और फाइनली तन्वी शर्मा हार गई मधुमी ओकुहारा से 21-12, 21। यानी अंत में हमने देखा कि 2-3-1 से भारतीय टीम जापानियों से हार गई।
3: मगर देयर इज गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस। जी हाँ, इंडिया ने जीत वहां पे पाई टेबल टेनिस के अरीना में से। इंडिया वन their match 3-2. And the star for India was Ashwini Gurpate, who won two matches. Yaad hai, is match mein, is time India was down 2-1. And the 3-2 se jeet mili. Aur phir Shreeja Akula, thanks to her, India through the quarterfinals. Aur North Korea se hamara samna hoga quarterfinals mein 3:50 mein. So look out for that. And now some news from the world of swimming.
2: Yes, Abhinav, and now I bring in the bright news for all our listeners. Because agar hum swimming ki baat karte hain, to Bharatiya swimmers ki jo team hai, 4x400 meter medley relay final ke andar wo qualify kar gaye hain. Ye final hoga hamara 2:55 par, minute par Bharatiya standard time ke hisab se. Ye team hamari bani hai Rishabh Das, Danush Suresh, Benedict Rohit aur Akash Manek se, jinhone kul milakar apni jagah aaj is finals, relay finals ke andar darj kar li. Because Bharat ne samapt kiya 7th spot par from a team, total team of 16 teams that were present in the meet.
3: Now moving on to cricket, all the eyes are on our women in blue, jinka aaj chal raha hai gold medal match against Sri Lanka. It's a repeat of the Asia Cup final. Bas India ko repeat karna hai jo unhone kara tha Asia Cup final mein, aur jeet hasil karni hai kyunki India won the toss, elected to bat first. And as we are talking, Smriti Mandhana has hit a superb boundary. So best of luck to the Indian team.
2: Yes, indeed, and hopefully India finishes on a good note over there against Sri Lanka. Now to carry on the good news, soft tennis ki duniya mein aapko bata dein ki Bharat ne

0: पाकिस्तान को हरा दिया। जी हाँ, जय मीना टुकोन, अरेन हुसैन एंड द मेन सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, जहाँ पर उन्होंने आउट प्ले कर दिया पाकिस्तान के अरेन हुसैन को 4-2, 4-0, 4-2, 4-0 से। एंड एज अ रिजल्ट वी वर एबल टू सिक्योर दैट विक्ट्री। लेकिन सॉफ्ट टेनिस की दुनिया में एक खुशखबरी जहाँ मैं आपको दे रही हूँ, वहीं पे आपको एक खबर ऐसी भी दूंगी जो थोड़ा सा सेटबैक रहा है हमारे भारतीय खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आद्या तिवारी सफर 1-4 डिफीट टू थाईलैंड अलीशा जियलगर इन वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी।
1: Good news for the world of boxing is Sakshi Chaudhary, our Commonwealth Games gold medalist. उन्होंने हराया है पेरिस ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इरा बेलिगास को इन द विमेन्स 51 केजी राउंड ऑफ 32 और हराया भी है कॉम्प्रीहेंसिवली। तीनों राउंड मिले साक्षी को एंड शी रजिस्टर्ड अ 5-0 विन। एंड याद दिलाए आर आर्मी मैन जादूमणि सिंह, ही इज इन एक्शन एज वेल अगेंस्ट चांद बहादुर थापा इन द 55 केजी राउंड ऑफ 32।
0: Right, and the last update and a quick one that we bring to you is from the world of karate, but not a lot of good news because karate mein women's committee 55 kilogram ki category mein Alisha Zabur 1-6 defeat against Indonesia's top three Agyum Sanastaraini in the round of 16, aur Chetan Bhagat bhi apna bronze medal match aaj haar gaye Chinese teammate Tu Tung Myung Yu se. As a result, not a lot of good news from the world of karate, Abhinav.
1: We are hoping for much better news from the world of cricket, and of course we have some big matches to look forward to, big encounters looking forward to for India today. So please tune in an hour at Akashwani 11:30. We will give you the latest update from Asian Games, Aichi Nagoya, and hopefully we have some better news and some great news for all you Indian fans out there. Thank you so much for tuning in on Akashwani.
2: You were listening to the Asian Games 2026 update.

0: attention. National recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.
1: जी हाँ दोस्तों, एशियन गेम्स 2026 के एक छोटे से हाइलाइट्स के बाद हम वापस आ चुके हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और बात हम कर रहे थे, जी हाँ, आज है विश्व गैंडा दिवस। हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। गैंडों की सभी पांच प्रजातियों, भारतीय एक सींग वाले, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, जावन और सुमित्रान के संरक्षण और उसके सामने वाले जो आने वाले खतरे हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना ही इस दिवस का उद्देश्य है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2010 में WWF साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। और हम बात कर रहे हैं इसकी, तो बात हम करेंगे ही, फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ कि यदि आपको कोई एक पशु, एक एनिमल या फिर कोई जीव एडॉप्ट करने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा पशु है जिसे आप अपने पास रखना चाहेंगे। ये तो हम जानते हैं कि आप सभी एनिमल लवर हैं। और मनोरुद्दीन जी ने कहा कि वो एक प्यारा सा खरगोश रखना चाहेंगे। और उससे पहले हमारे साथ शुभजीत जी जुड़े थे, वो चाहते थे कि डॉग हो उनके पास। इसके अलावा वो पेंगुइन को पसंद करते हैं। फिलहाल हमारे पास फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं और आप यदि चाहें अपने मन की बात हमारे साथ शेयर करना तो ज़रूर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है जिसे आप जुड़ना चाहेंगे। हमारे साथ एक लोग जुड़ रहे हैं, आइए उन कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार, आपका नाम?

0: मैं शोभिक शोकर बोल रहा हूँ कस्बा से।
1: शोभिक सरकार, शोभिक जी बताइए कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ, और आप जो टॉपिक दिया है एकदम मन की टॉपिक दिया है आपने
1: जी,
0: इसलिए आपको मैंने मैनी थैंक्स दीदी
1: जी। एक्चुअली ये टॉपिक सबको अच्छा लगेगा है ना, सबके दिल के करीब है एकदम। एनिमल से तो हर कोई प्यार करता है
0: एकदम, एनिमल से जो होता है ना क्यूट क्यूट जो एनिमल जो होता है बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे लगता है कि हमारे सबके दिल में कोई ना कोई जिसे प्यार करते हैं अपने पास रखना चाहते हैं ना, कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण हम लोग नहीं रख पाते वो एक अलग बात है
0: एकदम दीदी।
1: तो बताओ।
0: हाँ दीदी, मैं जो रखना चाहता हूँ वो है पांडा।
1: पांडा,
0: पांडा हाँ।
1: और मैं पांडा से मैं एक बात बताऊँ बड़ी मजेदार?
0: हाँ हाँ हाँ।
1: मेरी जो बेटी है ना वो मुझे पांडा बोलती है। वो मुझे इतना मतलब हंसाती है कि पूछो नहीं।
0: क्या?
1: तो आपने भी मेरे दिल की बात मतलब मन की बात एकदम से कह दी।
0: एकदम दीदी, आप देखिए जो पांडा जो है वो तो पहले तो क्यूट होता है। हाँ। और जो होता है वो ना आपको पांडा के एक नेचुरल जो एक जो देखा था मैंने वो वीडियो में देखा था।
1: हाँ।
0: और जो उसको जो लालन पालन जो करता है वो जो आदमी जो लालन पालन जो करता है उसका दो दोस्त बन जाता है। मैं देखा था, मैं एक वीडियो में देखा था, वो जापान का एक था वो जू था, वहाँ पर मैं देखा था वो जो लालन पालन जो करता है उसको जो जत्न जो करता है खाना पीना जो देता है उसके साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो जाता है
1: बहुत।
0: हाँ। और उसके बाद में दार्जिलिंग में कुछ मैंने पहल गया था उस वहाँ पर भी देखा था छोटा छोटा जो पांडा जो था बहुत अच्छा लगा, क्यूट लगा मुझको। हाँ।
1: और उसकी आंखों की तरफ जो काले घेरे होते हैं वो एक बड़ा ही क्यूट सा बना देते हैं ना उसको।
0: बहुत अच्छा। हाँ एकदम दीदी बहुत अच्छा लगता है। और वो जो छोटा छोटा जो बांस जो है ना, बांस जो बाम्बू जो होता है वो खाता है।
1: हाँ
0: हाँ बहुत अच्छा लगता है, एक साथ मिलकर थकता है, कोई ना कोई क्यूटनेस कोई खेल करता है बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं पांडा को जब मैं बोला था जो भी बहुत क्यूटनेस मुझको लगता है इसलिए मैं इसको लालन पालन में करना चाहता हूँ दीदी
1: जी। बहुत अच्छा जी शोभिक जी। और मैंने बताया कि मेरी बेटी पांडा के थी तो आपके दिमाग में अब आ गया होगा कि मैं इतनी मोटी होंगी है ना।
0: नहीं ऐसे से नहीं जी, आपको जो बेटी जो है आपको जो बोलता है मुझको जो लगता है आप क्यूट है इसीलिए बोलता है।
1: एग्जैक्टली मैं क्यूट हूँ और थोड़ी सी चुबी चिक्स जैसे होती है ना वैसी टाइप की हूँ ना, तो वो मुझे वैसे ही समझती है, तो उसके अभी पांडा फेवरेट है एक्चुअली। तो आपने ये हमारे साथ शेयर किया बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने मन की बात हमारे से क्या कर सकते हैं। देखिए शोभिक जी कितने लकी थे कि उनको मैंने डायरेक्ट तुरंत गाना बजाने से पहले उनको ले लिया, और एक दोस्त और जुड़ रहे हैं उनको भी मैं ले लेती हूँ सीधे। हेलो।
2: हेलो
1: हाँ, कौन बोल रही हैं? पायल बोल रही हैं।
2: हाँ, क्या होना चाहिए?
1: बढ़िया एकदम। देखो मैंने पायल का नाम पहचान लिया पायल की आवाज से है ना।
2: क्या होना चाहिए?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ। और बताओ टॉपिक पता है तुमको कि नहीं?
2: दीदी एक बार एक रिपीट कर दे
1: प्लीज। टॉपिक है कि यदि कोई एनिमल अडॉप्ट करने के लिए यदि तुमको दिया जाए तो तुम कौन सा एनिमल अडॉप्ट करोगी?
2: ओके ठीक है, अच्छा मैं चले ऑनलाइन ही बोली ना तो मैं।
1: हाँ बोले। हाँ बोलो, अभी ऑनलाइन पर ही हो।
2: ओके तो दीदी अमर मने हाय से हमें जो दिया अडॉप्ट करते चाहिए तो देने में डॉग माने कुकुर इसे क्या अडॉप्ट करूँ, कारण और मने हाय एनिमल था माने एक कुकुर शेटा ज्योतिर्ता प्रभु भक्त है माने ज्योतिर्ता डेडिकेटेड তো সে কিন্তু কখনো বিট্রে করে না মানুষের সাথে, তো আমি সুতরাং আমি কুকুরকে অ্যাডপ্ট করতে চাই।
1: ও বহুত अच्छी बात है। और তোমার পাস है क्या कोई एनिमल डॉग अभी?
2: না एक्चुअली এখনো অবধি নেই দিদি, তবে ইন ফিউচারে যদি করতে চাই তো আমি
1: ডগকে করব। শুকরিয়া পায়ে জি, শুকরিয়া। तो पायल तो डॉग को करना चाहती है, और डॉग को तो मुझे लगता है कि डॉग के तो लवर बहुत सारे लोग हैं, और एक्चुअली डॉग के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, और वो इतने इमोशनल होते हैं कि आपके इमोशंस को आपके फेस को देख करके वो समझ जाते हैं, और आप उनको यदि ज़रा सा भी प्यार देंगे ना, वो मुझे लगता है कि 20 गुना प्यार आपको देते हैं, वो इतना समझते हैं। और डॉग जो पेट्स हम लोग जो रखते हैं ना दोस्तों, वो हमारी एक थेरेपी होती है, वो हमें, हाँ यदि हम बीमार हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो मुझे लगता है कि वो एनिमल्स हमको धीरे धीरे अच्छा कर देते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि एनिमल्स को आप अपने साथ रखें और उनकी देखभाल करें, उनको पेट के रूप में अपने घर में पालें, तो आप काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगे। और विदेशों में एनिमल्स पालने का कारण भी ज़्यादातर इसीलिए है क्योंकि वहाँ लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, अकेले बुज़ुर्ग रह जाते हैं या अकेले लोग रह जाते हैं, तो वो उनके सहारे रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक सहारा है। हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ रहे हैं, उनको लेने के बाद मैं गाना सुनवाऊंगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? उनको शायद हमारी आवाज नहीं आ रही और उनका ड्रॉप हुआ है किसी कारण से, तो चलिए हम अगला गीत सुनवाते हैं, दिल मेरा चुराया क्यों।

0: दोस्तों आपका दिल किसी ने तोड़ा है या किसी तरह से उदास है तो बस कुछ नहीं, अपने अडॉप्ट एनिमल के पास चले जाइए, वो आपको सहला देगा, फुसला देगा, बहला देगा। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक खास सूचना है, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR Avenue कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए। यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक किया उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332120250 0332120612 या फिर 0332120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। और दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो हम उनको ले लेते हैं चलते चलते। हेलो,
1: आकाशवाणी
0: जी, आकाशवाणी से बोल रहे हैं, बोलिए।
1: एफएम गोल्ड चैनल है?
0: नहीं, ये एफएम रेनबो है।
1: अच्छा, सॉरी, ठीक है।
0: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे कुछ ऐसे दोस्तों से कि जो यदि उनको एडॉप्टेशन के लिए किसी एक जानवर की या किसी भी जीव की के लिए कहा जाए तो वो किसको चुन सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े और फिलहाल तो हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। 10:52 हो चुके हैं, अंतिम गीत प्ले करने का वक्त भी आ गया है और अंतिम बात कहने का वक्त भी आ गया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आज गैंडा दिवस मनाया जा रहा है, तो दुनिया में गैंडों की कुल 5 मुख्य प्रजातियाँ बची हैं जिसके बारे में हमने बात की। एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्र इनमें शामिल हैं। भारत में मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं जिसकी सबसे बड़ी आबादी असम के कांजीरंगा

राष्ट्रीय उद्यान में है। तो हमने बात की दोस्तों हमारे कुछ साथियों की अपने दोस्तों से कि वो कौन सा पशु अडॉप्ट करना चाहेंगे। फ़िलहाल आपकी दोस्त अंतिम गीत पेश करते करते आपसे इजाज़त चाहेगी। 11:10 पर हमारी मुलाकात होगी FM गोल्ड यानी खरा सोना पर।

0: जी हाँ, हमारी दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती। दिव्या भारती के गीतों और किस्सों के साथ हम आएंगे एफएम गोल्ड यानी खरा सोना 100.1 पर। मैं आपकी दोस्त सविता और अंतिम दोस्त को लेते लेते विदा लूंगी। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोल रहे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग जी।
0: गुड मॉर्निंग, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जीतू बात कर रहा हूँ।
0: जीतू जी, झटपट कह डाली अपनी बात, बिल्कुल हमारे पास समय खत्म हो चुका है।
1: जी बिल्कुल जी, आपको प्रोग्राम तो मैं सुन नहीं पाया हूँ, है ना, 11:45 से मैं सुन पाया हूँ 15 मिनट
0: जी,
1: और जुड़ने का भी कोशिश किया लेकिन अभी लाकड़ी कॉल पे ही जुड़ा हूँ। तो मैं बोलना चाहूंगा जैसे कि वैसे तो मेरे लिए मेरे घर के आसपास जो होते हैं डॉग जो होते हैं, हाँ, तो मैं उनको मतलब रखना चाहूंगा।
0: अच्छा,
1: तो अपनी बात तो मतलब उसको मतलब जैसे कि बोलते हैं कि जैसे डॉग होते हैं ना बहुत से, मतलब जैसे कि कोई आदमी व्यक्ति ऐसा आता है ना बाहर से, बाहरी आदमी तो जान में पहचान है, तो वो थोड़ा वहाँ पर जो है मतलब चिल्लाता है भोंकता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति आ गया है, बाहरी व्यक्ति कोई आया है, इसलिए हमारे जो डॉगी जो है भोंक रहा है।
0: बिल्कुल, तो वो हमारे अच्छे केयर टेकर है।
1: जी बिल्कुल जी, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा शॉर्ट में अपनी बात
0: जी।
1: थैंक यू
0: आपका आने के लिए, शुक्रिया। तो चलते चलते हमने हमारे एक दोस्त को लिया और मैं अंतिम गीत फिश इश्क फॉरएवर से सुनाना चाहूंगी। आइए सुनते हैं और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक अंतिम शेर आपके लिए कि हम क्या करें अगर न तेरी आरजू करें, हम क्या करें अगर न तेरी आरजू करें, दुनिया में है और कोई भी तेरे सिवा है क्या। तो बस चलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।

0: Şampiyiz, Ayçi ile Bolu'ya.
1: वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मेरे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है इस वक्त दोस्तों अभिनव कुंशी और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर आज के दिन की जो भी है भारतीय महिलाओं का क्रिकेट का मुकाबला. दे प्लेड गेम अगेंस्ट श्रीलंका. इट्स द फाइनल मैच एंड वी डू होप इन दिस आवर होप्स आर रेस्टिंग ऑन द इंडियन cricketers that they'll be getting us the gold today. The first time in this Asian Games when the Indians can eye a gold medal and hope for that. Bharati kaptan hamari taraf se Harmandeep Kaur ne toss jeet kar pehle aaj ballebazi karne ka nirnay liya. And that has proven to be very lucky for the Indians because they are off to a frolicking start. जहाँ 14.3 ओवर में भारतीय महिलाओं ने अभी तक 141 ऑन बोर्ड बना दिए एक विकेट गवाकर, जो कि गया शिपाली वर्मा का जिन्होंने आज 48 रन बनाए 29 बॉल्स में. शी जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ हाफ सेंचुरी बाय अ मियर टू रन्स ओवर देयर थैंक्स टू अ स्टुपेंडस कैच दैट वाज कॉट बाय काव्या काबंदी ऑन द बॉल ऑफ चामुदी प्रबोदा. Much needed wicket out there for the Sri Lankans because this partnership was getting very, very stable and sturdy between Shefali Verma and of course Smriti Mandana, but they were able to get a breakthrough on 99 runs. So a good start, Abhinav, for the Indians out there.
2: Yes, a brilliant start by our Indian women in blue, and hopefully they keep going great guns. And unfortunately, टेबल टेनिस के अरीना से इतनी अच्छी न्यूज नहीं है क्योंकि एक बहुत टफ इंकाउंटर था इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम का साउथ कोरिया के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल्स मैच में. हरमीत देसाई, मनुषा और मानव ठक्कर तीनों अपना सिंगल्स मैच हार चुके हैं और उस हार के बाद वो 3-0 जीत के बाद साउथ कोरिया ने एडवांस करा है क्वार्टर फाइनल्स में. बट हमारे लिसनर्स डिसअपॉइंट मत हुई है क्योंकि हमारी इंडियन विमेंस टीम जो टेबल टेनिस की टीम है वो अपना मैच जीती थी प्री क्वार्टर फाइनल्स का थाईलैंड के खिलाफ 3-2 से, और आज हमारा क्वार्टर फाइनल है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ at 3:50 PM.
1: जी, और जैसे हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि हरमनप्रीत कौर जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी. जी हाँ, 73 रनों पर हरमनप्रीत कौर आज आउट हो गई है. 42 गेंदों में 73 रन उन्होंने आज बनाए भारत के लिए जिसमें 5 चौके और 6 छक्के मौजूद थे. एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 173.8 द विकेट कमिंग जस्ट एट द राइट टाइम. एंड वी नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स फेंसिंग वेयर द इंडियन मेंस इंडिविजुअल फॉइल campaign has come to an end in the round of 32 with both fencers crashing out against the Kazakh opposition. Himansh Singh Sanasam also succumbed to a 9-15 defeat against Ghalem Nurumov, while 17-year-old prospect Sachin met an identical fate, falling 9-15 to Timofey Semyonov. So, भारतीय मेन का इंडिविजुअल फॉइल कैटेगरी के फेंसिंग में भी आकर एशियन गेम्स 2026 में समापन हो गया है.
2: जी हाँ, एंड लेट्स टॉक अबाउट बैडमिंटन जिसमें विमेन्स टीम का कैंपेन खत्म हुआ है. अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट ऑल दे 3 सिंगल्स मैचेस टुडे. पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा एंड तन्वी शाह ऑल लॉस्ट द सिंगल्स मैचेस. द ओनली ब्राइट स्पॉट वाज गायत्री गोपीचंद एंड ट्रिक्सा जॉली हु वन द डबल्स मैच. मगर निराश मत हुई है क्योंकि हमारी मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में खेल रही है जापान के साथ. 11:30 बजे ये मैच शुरू होना था एंड द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट अबाउट टू बिगिन. सो होपफुली द इंडियन मेन्स टीम गेट्स अस सम गुड news from the badminton courts.
1: Ji, and a slight correction to be made over there ki Smriti Mandana abhi

0: भी क्रीज पर टिकी हुई है। जी हाँ, 73 रन उन्होंने बनाए हैं, 43 गेंदों में उनका विकेट नहीं गया है। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की जो कप्तान है, उनका विकेट जा चुका है। 17 गेंदों में 19 रन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। बट स्मृति मंदना, ऑल होप्स रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर्स टुडे, क्योंकि शायद आज वो दिन भी हो सकता है जहां हम उनके बल्ले से 100 रन यानी सेंचुरी आते हुए देख ले। ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट। इंडिया गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कमिंग बैक नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू, जो है कबड्डी की दुनिया से, जहां भारत ने आज साउथ कोरिया को 63-31 से हरा दिया इन द मेंस कैटेगरी, एंड दैट वाज अ वेरी कन्विंसिंग सॉलिड विन। अब भारत बांग्लादेश को कल फेस करेगा इन द ग्रुप स्टेज अगेंस्ट चाइनीज तेपाई, व्हिच विल बी द नेक्स्ट गेम कमिंग अप टुमारो इन कबड्डी।
1: Of course, a great news there from Kabaddi, and also great news from boxing, because Sakshi Chaudhary has beaten the Paris Olympics bronze medalist Era Villegas and has advanced to the women's round of 16 in boxing 51 kgs. And please do not miss Jadumani Singh ka bout hone wala hai Chandra Bahadur Thapar ke khilaf, 55 kg round of 32. This is going to happen at 2 p.m. And of course, we will be back with the latest updates and hopefully Smriti Mandana ki century ke saath 12:30 baje only on Akashwani. So hopefully we'll get you more good news from Aichi Nagoya Asian Games 2026. Asian Games.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एशियन गेम्स 2026 के अपडेट लेके आए हैं। मैं अभिनव पुंछे, मेरे साथ है साक्षी मानवाल। और गुड न्यूज फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, इंडिया ने टारगेट दिया है श्रीलंका को गोल्ड मेडल मैच में 217 का। जी हां, इंडिया में 216 for 3। टॉप स्कोरिंग वाज स्मृति मंदना विद 79, शिफाली वर्मा 48 एंड अ स्टनिंग 22 ball 49 बाय ऋचा घोष। श्रीलंका जवाब में एक विकेट ऑलरेडी अपना खो चुके हैं, इमेश दुल्यानी आउट हो गए, मगर कैप्टन फैंटास्टिक चमारी अट्टापट्टू इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। याद दिलाएं, ये वही हैं जिन्होंने 83 नॉट आउट मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ, एंड दैट हैड मेड श्रीलंका चेज अ रिकॉर्ड टारगेट ओवर देयर। सो इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, इट्स हाई स्कोरिंग, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम वी अपडेट यू देयर इज सम विकेट्स, एंड होपफुली शिफाली दिस द कैप्टन फॉल्स।
2: Well, let's hope for the best for India, always rooting for India. Go India, go the women in blue. And moving on to the next quick update, दोस्तों आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं from the world of fencing. Fencing में तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी भारत की तरफ से बनी है जिन्होंने अपना राउंड ऑफ 32 में वुमेन्स एपी इंडिविजुअल को जीत कर विद अ कन्विंसिंग 15-10 की विक्ट्री थाईलैंड के नटापापट संगनियो के ऊपर, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई टुवर्ड्स द राउंड ऑफ 16। जी हाँ, मतलब दिस इज गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, बिकॉज तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी है जो अब राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सॉन्ग से रा के साथ अब उनका आमना सामना होगा। वहीं फेंसिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वुमेन्स एपी इंडिविजुअल में मितवा जेसंगबाई चौधरी, या फिर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में भी हम अगर देखें हेमश सिंह सनासम या उसके साथ साथ सचिन, ये सारे ही प्लेयर्स अपने अपने राउंड से यानी राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए।
1: थैंक यू सो मच फॉर दैट साक्षी, अपडेट कमिंग इन फ्रॉम फेंसिंग। मगर बैडमिंटन से भी आपको अपडेट दीजिए तो इंडिया वर्सेस जापान क्वार्टर फाइनल्स आर ऑन राइट नाउ और एक्शन में है लक्ष्य सेन, उनके सामने कोडाई नारोका और इनका बहुत ही क्लोज इंकाउंटर चल रहा है, 1-1 चल रहा है, क्योंकि पहला जो सेट था वो लक्ष्य सेन हारे थे 21-11 से, दूसरा सेट जीते 21-5 से, अभी 19-14 से पीछे है लक्ष्य सेन। याद दिलाएं, इसके बाद हमारी सात्विक चिराग की जोड़ी होने वाली एक्शन में, तो होपफुली दिस टाई कैन बी टर्न्ड अराउंड एंड इंडिया हैज अ चांस, बिकॉज आर इंडियन वुमेन आर ऑलरेडी आउट। द वुमेन्स टीम का कैंपेन हैज एंडेड बिकॉज दे लॉस्ट अर्लियर टुडे टू थाईलैंड एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन वुमेन टीम, बिकॉज सारे सिंगल्स मैचेस हम लोग हारे हैं एंड ओनली गायत्री गोपीचंद एंड ट्रीसा जोली गिव अस सम गुड न्यूज।
2: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, जहां सुबह से हमारे पास शूटिंग में कुछ खास अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। भाई अगर अब हम स्कीट की बात करें तो मेन्स स्कीट के जो आज प्रदर्शन रहे हमारे भारतीय शूटर्स का मेन्स स्कीट के अंदर, वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग रहे। मतलब अनंजीत सिंह नरूका सेकेंड प्लेस पर अभी बने हुए विद अ टोटल ऑफ 96 पॉइंट्स एंड ही हैज पुट हिमसेल्फ इन द प्राइम पोजिशन टू क्वालिफाई फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द मेन्स स्कीट इवेंट। वहीं मिराज अहमद खान इस समय 23rd प्लेस पर है विद अ टोटल ऑफ 91 पॉइंट्स और भवतेक सिंह गिल 35th पोजीशन पर है विद अ टोटल ऑफ 86 पॉइंट्स। तो यानी अनंतजीत सिंह नरूका ने अभी भी भारतीय शूटर्स और शूटिंग के कैंपेन की उम्मीदों में वो रोशनी रखी हुई है डालकर, कि हो सकता है जिस तरह से वो 96 पॉइंट्स के साथ अभी बैठे हुए हैं, he stands in a very good place to qualify for the individual finals also. अगर women's skeet standings की हम बात करते हैं जो आज के हमारी महिला shooters का प्रदर्शन रहा है women's skeet में, तो Raiza Dhillo has moved up to the 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhalewal इस समय 9th position पर है with a total of 89 points और Maheshwari Chauhan इस समय 16वें स्थान पर है with a total of 85 points.
1: थैंक यू फॉर दैट अपडेट अगेन साक्षी। और एक और आपको दे दें जाते हुए बस ब्रेकिंग न्यूज खबर, गुड न्यूज अगेन फॉर द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, श्रीलंका हैव लॉस्ट दिस सेकंड विकेट, सो होपफुली जस्ट 8 मोर टू गो, बस 8 विकेटें हैं और गोल्ड तय है हमारे। दैट्स ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस अपडेट फ्रॉम आकाशवाणी, प्लीज स्टे ट्यून एंड एट 1:30 यू कैन कम बैक फॉर अनदर अपडेट।
2: And just to carry on with the quick one also over there, because we have a little amount of time, दर्शकों आप दोस्तों आपके साथ, तो quickly आपको बता दें कि भारत की जो अभी भी medal tally में table standing है, वो 12वें स्थान पर बनी हुई है। कुल मिलाकर हमारे पास अभी 6 medals या 6 total medals हैं, जिसमें 4 silver और 2 bronze हैं। Let's also not forget that these have come from the world of shooting. These have come from the world of shooting primarily, but for now, hoping that India gradually climbs up, it's a goodbye.
0: Asian Games 2000. Gaane Bajuk on your radio. Shuncho 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadesh.

0: Kasa KBS 아이진의 고야.
1: Welcome, a very warm welcome, Jai Hind. As we bring to you the latest update at 1:30 PM on Akashvani, I am Sakshi Madhwal, dosto. और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव पुंछी एंड वी ब्रिंग यू द बिग न्यूज कि भारत को एशियन गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है. जी हाँ, वो लेकर आई हमारे लिए हमारी क्रिकेट की भारतीय महिला की टीम. यस, द फर्स्ट गोल्ड दैट कम्स इन फॉर इंडिया. They have gone on to create history for the Indians because this is always going to be special. The first goal of the ongoing Asian Games 2026, they defeated England by a huge margin of 147 runs. भारतीय महिलाओं ने 216 रन बनाए उनके given stipulated 20 overs में for the loss of 3 wickets and then they went on to defeat and completely choked the Sri Lankans for just mere 69 runs. Abhinav, what a day to celebrate this moment, to cherish this moment.
2: जी हाँ, श्रीलंका को हराया है हमारी भारतीय महिलाएं ने और क्या ट्रिमेंडस विक्ट्री थी श्रीलंका के अगेंस्ट, बिकॉज इंडिया हैड पुट अप अ मैमथ टोटल ऑफ 216 for 3 और उसके बाद श्रीलंका जो जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड चेस करी थी सेमीफाइनल्स में आज कुछ नहीं कर पाए. इट वॉज अ डेमोलिशन डर्बी जैसे कहा जाता है. 69 ऑल आउट, इंडिया विनिंग बाय 147 रन एंड द इंडियन वुमेन हैव डिफेंडेड द गोल्ड विच दे वन इन हैंगझो 4 years अगो. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस विद द बैट बाय स्मृति मंदना विद 79, शिफाली वर्मा 48, ऋचा घोष 22 ball 49 और उसके बाद विकेट्स में तो कमाल दिखाया डीपी शर्मा विद 3 wickets, शिफाली का फिर से ऑल राउंड परफॉर्मेंस 2 wickets, श्रियंका पाटिल विद 2 wickets एज वेल एंड श्री चन्नी विद 2. सो कमाल की परफॉर्मेंस और इंडिया के पास पहला गोल्ड आ चुका है. जी हाँ, सुबह से आप लोग हमारे अपडेट सुन रहे होंगे, थोड़े से निराश हो रहे होंगे क्योंकि इंडिया का आज इतना अच्छा दिन नहीं गया, मगर साक्षी व्हाट अ ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस विक्ट्री एंड आई थिंक पूरे नेशन का जो मूड है आज is going to get much better and everybody is going to have a smile on their face.
1: Yes, indeed. और आज ये चेहरे की हंसी हटनी ही नहीं चाहिए because हमारी लड़कियों ने हमें इतने सारे reasons दिए celebrate करने के लिए. सबसे ऊपर तो gold medal रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएं कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए 8th लगातार 8वीं T20 इंटरनेशनल की जीत है. यस, दे हैव गॉन ऑन टू विन 8 T20 इंटरनेशनल्स ऑन अ ट्रॉट एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. और उसके साथ साथ श्रीलंका ने आखिरी बार भारत को 2024 के एशिया कप के फाइनल्स में हराया था, वो हम सब जानते हैं. उसके बाद से भारतीय महिलाएं उनको 8 बार T20 इंटरनेशनल मैचेस में हरा चुकी हैं. और एक और बहुत अच्छी खबर जो है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए वो ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये जो 147 रन के मार्जिन से श्रीलंका को हराया है आज, वो अभिनव आज तक का सबसे बड़ा डिफीट मार्जिन है जो भारत ने किसी भी ओपोनेंट को दिया होगा. 147 इज द बिगेस्ट मार्जिन बाय व्हिच इंडिया हैज डिफीटेड एन ऑपोजिशन नेशन इन अ टी20 इंटरनेशनल.
2: इट्स बीन अ ग्लोरियस सितंबर इंडियन वुमेन के लिए. एशिया कप में उन्होंने धमाल दिखाया और आज उन्होंने एशियन गेम्स में सुपर धमाल दिखा दिया है ये जीत पाकर. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रिमेंडस एफर्ट बाय द इंटायर इंडियन वुमेन्स कंटिजेंट, कोचेज कंटिजेंट, सबको बहुत ढेर सारी बधाइयां और हमारे देशवासियों को भी बहुत ढेर सारी बधाइयां क्योंकि अब इंडिया का गोल्ड का खाता खुल चुका है. जी हाँ, एंड इट इज नॉट द ओनली गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द एशियन गेम्स. वी हैव मोर गुड न्यूज फॉर यू बिकॉज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई अगेंस्ट अ वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट कोडाई नारोका के खिलाफ. लक्ष्य सेन ने अपना मैच, पहला गेम हारा लक्ष्य सेन ने 11-21 से, दूसरा गेम जीता 21-5, मगर तीसरे गेम में ही वॉज डाउन 14-19, फिर भी कम बैक करके उन्होंने वो गेम जीती 21-19. वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, इंडिया को वो 1-0 की लीड दी. एंड अनदर गुड थिंग इज सात्विक चिराग, हमारे फेवरेट डबल्स पेयर, अभी एक्शन में है. वो पहली गेम जीत चुके हैं अपने जापान के ओपोनेंट्स के अगेंस्ट एंड साक्षी कैन गिव अस डिटेल्स अबाउट दैट.
1: यस इंडीड, पहला गेम तो वो अपना जीत चुके हैं. हम बात करें सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की अगेंस्ट द ओपोनेंट्स होकी और कोबायाशी. लेकिन सेकंड गेम के अंदर भी इस समय बहुत तगड़ी फाइट दोस्तों चल रही है. जापान हैज ओनली अ 2-point lead right now over the Indian opponents because in fact वो 2-point की lead भी अब एकदम खत्म ही हो चुकी है because भारत के पास इस समय 18 points है second game में और जापान के पास है 17. यानी गेम को मैच पॉइंट पर लाने के लिए इंडिया को दो और अंक, इनफैक्ट कहना चाहिए जीतने के लिए दो और अंक कमाने लगातार.

0: अगर ऐसा होता है तो वेल इंडिया शुड बी एबल टू गिव दिस एंटायर मैच इन देयर फेवर बट राइट नाउ कीपिंग ऑल दोस होप्स एंड फेथ्स अप इट्स टाइम फॉर अ मोमेंट फॉर अस टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द विक्ट्री दैट हैज कम द वे एंड थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम अ वेरी बिग माइलस्टोन अचीव्ड ओवर हियर बाय द इंडियन गर्ल्स कूडोस टू इंडिया जय हिंद हमारे हर देशवासी को और इसके साथ ही हम कहेंगे कि यहाँ से ये जो खुशियों की हम जो आपको खबर और अपडेट लेके आ रहे हैं ये सिलसिला शुरू हो जाए और बरकरार रहे फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत गुड बाय
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया अभी यहाँ पे

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

मेरा भी ये मस्त मगन मन बस और बस आपका ही नाम दोहराए, इसीलिए तो आपसे बस यूं ही जब मेरा मन चाहे मैं मिलने आऊं और आपको सुनवाऊं कुछ खूबसूरत से नगमे और आपको बताऊं। फिलहाल तो इस चंक में सिनेमा की बातें, तीन का तड़का सुन रहे हैं आप चैनिका के साथ। और आप जानते हैं कि केवल तीन का तड़का तक ही हमारा आज का ये साथ सीमित नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पहला गीत कार्यक्रम का कह रहा था कि किस तरह से मन जो है वो मस्त मगन हो जाता है, आपका भी जरूर हो जाता है मैं जानती हूँ, हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि वो माहौल वो वाइब आप और कहीं कहीं कहीं भी नहीं पा सकते जो यहाँ एफएम रेनबो पर आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया की कुछ ताजा ताजा खबरों के साथ आज का ये कार्यक्रम सिनेमा पर आधारित हमारा ये मैटिनी शो जिसे हम तीन का तड़का कहते हैं। सबसे पहले तो एक बेहद खास खबर, वो ये कि 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी गुजरात में आयोजित हो रही है और इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के विज्ञान भवन की बजाय ये सेरेमनी हट गई, दूसरे राज्य पहुंची और गुजरात के केवड़िया में यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ये जो भव्य जो समारोह है इसका आयोजन किया जा रहा है जो कुछ ही पलों में शुरू होगी और हम बनेंगे इसके साक्षी। हम आपको सुनवाएंगे आंखों देखा हाल और शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण केवल एफएम रेनबो पर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को ये अवार्ड्स देंगी और अभिनेता कार्तिक आर्यन जो इस दफा बेस्ट एक्टर का खिताब अपने घर ले जाएंगे वो कल गुजरात पहुंच चुके हैं और वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गए। और इसके अलावा अगर दूसरे विनर्स की मैं बात करूं तो चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को तो ये अवार्ड मिलने ही वाला है, साथ ही मामूटी को भी मिलेगा ब्रह्मयुग फिल्म के लिए, यानी दोनों मिलकर इस अवार्ड को शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की कैटेगरी की मैं बात करूं तो यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए ये पुरस्कार मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार श्रीकांत को मिलेगा और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलेगा आर्टिकल 370 को। आगे और बहुत सारी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं सिनेमा से जुड़ी, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं श्री रामचंद्र की आवाज में चंदू चैंपियन का ये खूबसूरत सा गीत, जीत का गीत।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत प्यारे श्रोताओं, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड तथा मेरा राशन मोबाइल ऐप की। वन नेशन वन राशन या राशन कार्ड आधार आधारित राष्ट्रीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना है, जो भारत के भीतर आंतरिक प्रवासियों सहित सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसके तहत लाभार्थी भारत में कहीं भी सब्सिडी वाला भोजन खरीद सकते हैं। द वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ONORC, ये जो योजना है ना, खाद्य और आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के तहत उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। यह प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य यानी फेयर प्राइस की दुकान से PDS लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड की इस पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेरा राशन मोबाइल ऐप 2021 में लॉन्च किया गया। राशन कार्ड होल्डर्स अगर अपना निवास स्थान बदलकर नई जगह जाते हैं तो वहां भी वो अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि नजदीक के फेयर प्राइस शॉप कहाँ है और वहां कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक देश भर में करोड़ों लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का फायदा उठा रहे हैं और इसमें उन्हें काफी सारे लाभ भी मिल रहे हैं। COVID-19 महामारी के दौरान ONORC प्रत्येक NFSA लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा साबित हुई थी। इससे उन्हें एक गंभीर संकट की अवधि के दौरान कहीं भी रहते हुए रियायती खाद्यान्न का लाभ उठाने की सुविधा मिली और इससे पहले किसी भी खाद्यान्न पोर्टेबिलिटी को चुनने की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं थी। अक्टूबर 2025 तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 78 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा का यह जो कदम है, ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तथा वास्तविक और आर्थिक पहुंच मिल सके, जो एक सक्रिय जीवन जीने के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात की वन नेशन वन राशन कार्ड तथा मेरा राशन मोबाइल ऐप की। 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: साल 2009 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स के सीक्वल की शूटिंग अप्रैल 2027 से शुरू हो सकती है और ये जो सीक्वल बन रही है इसकी खबर भी मैंने ही आपको दी थी यहां सबसे पहले। तो निर्देशक राजकुमार हिरानी अभी फिलहाल सुनने में आया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान फरवरी में फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जिसके बाद प्रोजेक्ट पर आधिकारिक तौर पर काम जो है वो आगे बढ़ेगा। और गौर करने वाली बात है कि सीक्वल में भी हमने सुना है आमिर खान के साथ करीना कपूर, आर माधवन और शर्मन जोशी की जो मुख्य जो स्टारकास्ट थी वही हमें फिर से इस सीक्वल में भी नजर आने वाले हैं।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: नागालैंड की फिल्म अंक को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है और ये इस साल भारत की ओर से ऑस्कर जाने वाली दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले मराठी फिल्म गोंदल को भारत की ऑफिशियल एंट्री के बतौर इस कैटेगरी में शामिल किया गया था। दरअसल अंक के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो TIFF के नाम से प्रसिद्ध है, 2026 में इस फिल्म ने प्लेटफॉर्म प्राइज जीता है और इसी प्राइज ने फिल्म को ऑस्कर में डायरेक्ट एंट्री दिला दी है। नागा फिल्म मेकर रिथेजा रियो की ये फिल्म धर्म परिवर्तन से अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश करते हुए एक आदिवासी व्यक्ति की कहानी है और ये इस साल टिफ में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म थी। अच्छा लगता है ना जब अपने देश की

कोई एक फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर नाम करे, लोग उसकी सराहना करें, पुरस्कार जीते हमारे देश की फिल्म, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी एक फिल्म का गीत अभी मैं आपको सुनवाती हूँ। चलिए सुनते हैं राग पटेल की आवाज़ में RRR का ये गाना। और अभी फिलहाल इस गीत के साथ 3 का तड़का को मैं रैप अप करूँगी। आप लोग सुनेंगे 3:30 पर विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग चैनिका। अभी फिलहाल के लिए आपसे इजाजत ले रही है आप सबके लिए ये गाना केवल FM रेनबो कोलकाता पर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पीकारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
1: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम बजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर

0: हमारा आभार। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
1: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
0: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओ, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
0: जी,
1: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
0: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे, 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
1: लेकिन श्रोताओ, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
0: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
1: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
0: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
1: हटिए सामने से। खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
0: जी,
1: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
0: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
1: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
0: जी,
1: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
0: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
1: आशुतोष, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
0: जी,
1: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
0: जी,
1: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
0: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
1: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, यह स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
0: जी,
1: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
0: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
1: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
0: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
1: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं तो यही कहूंगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
0: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।

0: या फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई

सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Deeksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India. Brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Deeksha, Deeksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर्मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर्मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
6: अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो,
7: उठो, उठो,
6: अरे उठो।
4: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
6: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
7: अच्छा। हाँ।
6: परियां परियां नाच रही थी। और हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
4: दूसरे ने कहा,
8: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बन

0: कर जाकर मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोच कर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
4: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ,
3: क्या
1: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
0: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।

0: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
1: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
2: नहीं खाता, तू क्या करता? अपनी जान से हाथ धोता?
3: तुम झूठ

0: ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
1: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
2: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी कोलकाता का ये एफएम रेनबो चैनल है। अभी फिलहाल थोड़ी देर में आप सुन सकते हैं एक विशेष प्रस्तुति। हम आपको ले चलेंगे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के सीधे प्रसारण की तरफ, जो एकता नगर गुजरात में आज बस थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाला है। और ये पुरस्कार प्रदान करेंगी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप लोग हमारे साथ बने रहें, बस कुछ ही देर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण केवल एफएम रेनबो कोलकाता पर।

0: Broadcast of the 72nd National Film Awards ceremony being organized in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Our commentators are Neelam Thapliyal in Hindi and Shailendra Singh Jadeja in English.
1: Ye Akashvani hai. Ab hum aapko Ekta Nagar Kevadia, Gujarat liye chalte hain, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम थपरियाल हिंदी में और शैलेंद्र सिंह जडेजा अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में अपने रेडियो से जुड़े सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ।
3: नमस्कार। Cinema lovers across the nation and around the globe, where Narmada flows with a timeless grace, under Sardar's gaze in this sacred space, the silver screen weaves its magic untold to crown Indian cinema's masters in gold. Along with my co-commentator, Ms. Neelam Thapliyal, and the team of Akashwani Vadodara and Ahmedabad, I, Dr. Shailendra Singh Jadeja, welcome our listeners to the live broadcast of the landmark 72nd National

0: फिल्म अवार्ड्स। गुड आफ्टरनून।
1: जी हाँ श्रोताओं, इस समय हम मौजूद हैं उस ऐतिहासिक समारोह स्थल पर जहां दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी आकाश को छूती खड़ी है। आज यहां भारतीय सिनेमा के वर्ष 2024 के श्रेष्ठ कलाकारों, फिल्मकारों और तकनीशियनों को देश के प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नर्मदा की लहरों की गूंज के बीच आज पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने दिल्ली की सीमा लांघी है और यह ऐतिहासिक क्षण अपने आप में एक फिल्मी पटकथा जैसा लगता है।
0: For the first time in our half a century, this historic ceremony has moved beyond the national capital to the majestic bank of the river Narmada. Today, Ekta Nagar serves as the ultimate crossroads where art, culture and national unity converge.
1: श्रोताओं, कुछ कहानियां पर्दे पर उतरती हैं और कुछ सीधे दिल में। सिनेमा उन दोनों के बीच का वह पुल है जहां भारत अपनी कहानी खुद सुनाता है। कहानियां हमारी विरासत हैं, किरदार हमारी पहचान और सिनेमा वह आईना है जिसमें दिखता है हमारा महान, अतुल्य, समृद्ध, गौरवशाली, विविधतापूर्ण, शक्तिशाली, सांस्कृतिक, अखंड भारत।
0: To truly appreciate the weight of this afternoon, we must look back to 1954 when the government of India instituted these honors as the state awards for films. Established under the Ministry of Information and Broadcasting, their founding vision was to promote cinematic excellence, encourage artistic craftsmanship, and build a unified national identity through the medium of films.
1: श्रोताओं, आज मेरे सामने जो दृश्य है उसे केवल भव्य कहना पर्याप्त नहीं होगा। सभागार रोशनी से जगमगा रहा है। मंच पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रतीक चिन्ह अपनी पूरी गरिमा के साथ दिखाई दे रहा है। सामने की पंक्तियों में भारतीय सिनेमा के जाने माने चेहरे बैठे हुए हैं। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन, धनुष, ममूटी, संजय मिश्रा, रणदीप हुड्डा, अनंत नाग और मनोज मुंतशीर जैसे कई जाने पहचाने चेहरे देख सकते हैं।
0: Over the past seven decades, the National Film Awards have evolved into the highest and most respected cinematic honor in our country. Unlike commercial award shows driven by box office collections, these awards celebrate artistic depth, socio-cultural relevance and technical mastery across all 22 constitutional languages, bringing mainstream blockbusters, regional gems and independent non-fiction onto the same prestigious national platform.
1: इन पुरस्कार पाने वाले चेहरों पर किसी पर उत्सुकता है तो किसी पर वर्षों की मेहनत के बाद मिलने वाले सम्मान की प्रतीक्षा। ऐसे अवसर पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। श्रोताओं, सिनेमा की यात्रा भी ऐसी ही है, कभी तालियां मिलती हैं तो कभी आलोचना।
0: And now, let us listen to what Secretary INB श्री चंचल कुमार जी has to say as his welcome address begins.
2: गौरव का विषय है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केवल सिनेमा की उत्कृष्टता का सम्मान नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास की यात्रा का आईना भी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाली फिल्में हमें बदलते भारत की झलक, भारत की कहानियाँ और इसमें भारत के लोग दिखाई देते हैं। हमें प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत ने जो आत्मविश्वास अर्जित किया है, भारतीय सिनेमा उसका साक्षी रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की उपस्थिति दिखाई देती है। आज फीचर फिल्म श्रेणी में 34 भाषाओं की कुल 400 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से ज्यूरी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। नॉन फीचर फिल्म में 24 भाषाओं की 161 फिल्मों के आवेदन थे, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में आज 23 पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

0: सिनेमा में उत्कृष्ट लेखन के लिए 3 पुरस्कार दिए गए हैं। इन पुरस्कार के चयन की पूरी प्रक्रिया में अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रम और विशेषज्ञता योगदान करने वाले सभी श्रेणियों के सम्मानित ज्यूरीगण को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सिनेमा, जिसे कभी केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था, आज सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है। गढ़वाली और तुलु जैसी भाषाओं में बनी फिल्मों की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय सिनेमा का निरंतर विकास हो रहा है। लोग अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के प्रति निरंतर और अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं। हमें खुशी है कि बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा ने तकनीक में ही नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट वैश्विक पहचान बना ली है। इस वर्ष की विजेता फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा की व्यापकता और रचनात्मक ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है। आर्टिकल 370 का प्रभावशाली ऐतिहासिक कथानक, श्रीकांत में दृढ़ संकल्प और संघर्ष की प्रेरणादायी कहानी, मिथ्या का गहन आत्मविश्लेषणात्मक तथ्य, ब्रह्मयुगन का वातावरण, सिनेमाई शिल्प और उत्कृष्ट प्रस्तुति, इसी प्रकार पुष्पा 2 और कल्की 2898 जैसी लोकप्रिय फिल्मों की सफलता मुख्य धारा के सिनेमा की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाती है, जबकि चलचित्र खौन और कमिटी कुरुलू जैसी फिल्म भारत की समृद्ध क्षेत्रीय कहानी कहने की परंपराओं को भी सामने लाती है। नॉन फीचर फिल्म के विजेताओं ने भी उन कहानियों और जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाया है जो अक्सर हमारे ध्यान से उझल रहती थी। भंगार, श्रम, जीविका, संघर्ष और मानवीय गरिमा से जुड़े परिस्थितियों के बीच जीने की इच्छा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। रामनामी, समुदाय की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करती है। मुझे खुशी है कि आज अनंतनाग साहब को मैं सामने देख रहा हूँ। मालगुड़ी डेज, अंकुर, हमारे किशोरावस्था की खूबसूरत स्मृतियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कन्नड़ के साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, अंग्रेजी भाषाओं की 300 से भी अधिक फिल्मों में स्मरणीय चरित्र निभाए। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर नई आवाज़, हर नई भाषा और हर नई कहानी के साथ भारतीय सिनेमा अधिक समावेशी, सशक्त और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष वेव्स के दौरान कहा था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब सिनेमा का दायित्व है कि वह हमारी ताकत को, विश्व को रूबरी होने का अवसर दे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे गांव, हमारे लोगों में जो हौसले की कहानियां छिपी है, उसे विश्व के सामने वह सामने लाए। आज हम एकता नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली से बाहर करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पहल में सरदार पटेल की वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना। आने वाले समय में यह पुरस्कार समारोह अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं तथा दादा साहब फाल्के सम्मान से अलंकृत श्री अनंतनाग जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक उन्हें बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आपका हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार जी। सामान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आइए आज की इस गौरवपूर्ण संध्या के बहुप्रतीक्षित पल का पूरे उत्साह, सम्मान और उल्लास के साथ स्वागत करें, क्योंकि अब हम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय पुरस्कार वितरण की प्रथम कड़ी में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
2: The National Film Awards are divided into 3 comprehensive primary sections: Best Writing on Cinema, Non-Feature Films and Feature Films. And finally, the icing on the cake is the Dada Saheb Phalke Award, India's best and the highest lifetime achievement award in cinema, recognizing a lifetime of extraordinary contribution to the growth and development of Indian film. So let's now begin with the Best Writing on Cinema.
3: श्रोताओं, पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए स्वर्ण कमल का सम्मान मिल रहा है कन्नड़ भाषा के लेखक डॉक्टर किचनूरु प्रदीप कुमार शेट्टी को। उनकी पुस्तक नानी रूडे निमा गागी, नानी रूडे नाना गागी, कन्नड़ सिनेमा दा थातवा मथु राजकिया।
2: While the winner of the best book on cinema author is being felicitated, before that let me tell you what is the jury doing about the best writing on cinema. It honors critical scholarship research and film journalism through Swarna Kamal medals. Non-feature films recognizes short stories, socio-environmental documentaries, biographical compilations and technical achievements in non-fiction cinema, and feature films celebrating artistic performance and technical brilliance across narrative feature films in all Indian languages, including high honors like Swarna and Rajat Kamal medals are the final epitome of these awards.
3: श्रोताओं, शीर्षक का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए हूँ, राज्य हमारे लिए है, कन्नड़ सिनेमा के दार्शनिक और राजनीतिक आयाम। श्रोताओं, यह पुस्तक कन्नड़ फिल्मों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि समाज, रणनीति, राजनीति, विचारधारा और दर्शन को समझने के माध्यम के रूप में देखती है।
2: The best book on cinema publisher is also now getting felicitated. It is the Mirror Pustaka Publication House, represented by Ms. Soumya H. Publisher Mirror Pustaka receives the Swarna Kamal alongside the author for bringing this landmark film literature to life. Represented by Ms. Soumya H., the publishing house was praised for high editorial quality and dedication to film studies. Their work ensures that critical cinematic discourses reaches film scholars nationwide.
3: श्रोताओं, संजीव श्रीवास्तव को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके हिंदी फिल्म समीक्षक के रूप में दिए गए विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक लेखन के लिए दिया गया है। उनका काम भारतीय सिनेमा के सौहार्द शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और समकालीन फिल्म निर्माण को एक नई और गहरी समझ के साथ पाठकों के सामने रखने के लिए सराहा गया है।
2: Shri Sanjeev Srivastava takes home the Swarna Kamal for his insightful Hindi film criticism. His writings demonstrate a keen understanding of cinematic form, narrative nuances and societal reflections in modern film. The next in the category is the non-feature films. The first mention is Chola Dora or Sui in Hindi. Director Shri Lakulesh Ghai receives a certificate and a special mention.
3: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में रहने वाले गद्दी समुदाय के जीवन, उनकी समृद्ध संस्कृति और उनकी अनूठी वेशभूषा पर आधारित है। फिल्म का मुख्य केंद्र गद्दी समुदाय की पहचान माना जाने वाला पारंपरिक पहनावा चोला डोरा है। श्रोताओं,
2: Director Lakulesh Ghai receives a special mention certificate for his subtle portrayal of traditional textile arts. The short film weaves a poetic visual thread around craft heritage and human emotion. The jury commended its tender observational technique. Next in the category is a special mention, Chola Dora or Sui, Director Shri Jaimin Modi receiving a certificate.
3: श्रोताओं, इसी श्रेणी में अगला पुरस्कार मिल रहा है मलयालम फिल्म भद्रकाली नाटकम को। फिल्म भद्रकाली नाटकम को विशेष उल्लेख का पुरस्कार प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। यह फिल्म केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक कला और अनुष्ठानिक कहानी कहने की कला को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर जीवंत और संरक्षित करती है।
2: In progress are the non-feature films awards. Next in line is the best script, Obur, Hindi and Kashmir. Scriptwriter Shri Faraz Ali receives a Rajat Kamal.
3: श्रोताओं, फिल्म के लेखक और निर्देशक फराज अली ने इस फिल्म के नाम में ओबुर यानी कि बादल शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे और भावनात्मक रूपक यानी मेटाफर के रूप में किया है। आधुनिक दुनिया में हमारा डेटा, हमारी तस्वीरें, वीडियो, यादें इंटरनेट के क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं। फिल्म के कश्मीरी ग्रामीण किरदारों के लिए इंटरनेट का यह क्लाउड पूरी तरह से नया और भ्रमित करने वाला है। वे मासूमियत में सोचते हैं कि उनका डेटा आसमान में तैरने वाले असली बादलों में चला गया है।

0: The next award in the category is Best Narration Voiceover. Little Planet, A Tale of Frogs in English. Narrator is Ms. Soundarya Jayachandran, who is receiving a Rajat Kamal. Soundarya Jayachandran takes the Rajat Kamal for an engaging, warm and articulate voice over narration. Her vocal performance transforms a natural history film on amphibians into an enchanting story for viewers of all ages. The commentary brings clarity, humor and wonder to ecological science.
1: श्रोताओं, यह 44 मिनट्स की एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है जिसे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में 9 साल की लंबी अवधि में फिल्माया गया है।
0: नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन परत 41 डिग्रीज च्या मागावर म्यूजिक डायरेक्टर श्री शिवपाल सिंह कांग रिसीव्स अ रजत कमल. Shivpal Singh Kang wins for his evocative musical score that elevates the film's emotional landscape. Blending acoustic textures with traditional melodies, his composition provides a subtle sonic heartbeat to the narrative. The score elevates key visuals, beats without overpowering the storytelling.
1: श्रोताओं, आपको और क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए चलिए आपको सीधे मंच से जोड़ते हैं.
2: अधिकारियों की भावनाओं को एक मार्मिक कथा का रूप दिया है. बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए रजत कमल, तमिल फिल्म ब्लू के लिए श्री टी एस हरिहारा सूदन को प्रदान किया जा रहा है.
3: As you would have figured, for exceptional sound design and immersive sonic textures, waves, silence and ambient shifts that evoke a child's wish to see a whale, blending hope, emotion and the vastness of sea into a moving experience. Silver Lotus for the best cinematography for the film Life in Loom is presented to Sri Edmund Ransom.
4: When Britishers introduced the chemical dyes in India, every weaver's lived.
2: श्री एडमंड रैंसम को अपनी भावपूर्ण काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है जो भारत के प्राकृतिक दृश्यों को एक जीवंत कैनवस में बदल देते हैं जहां मनोहर छायांकन गति हथकरघा बुनाई की कालातीत कलात्मकता और भावना का उत्सव मनाती है. और अब गैर फीचर फिल्म श्रेणी में गोल्डन लोटस अवार्ड कर्तव्य ध्वनि के साथ तैयार हो जाए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए हिंदी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के निर्देशक श्री आनंद एल राय प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल का सम्मान.
5: आसमान छूती प्रतिमा के तौर पर विश्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा.
3: The film is recognized for creative chronicle of the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming an engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, unity and national pride. Award for the best short film is being presented to Anushka Motion Pictures and Entertainments for the Marathi language film Hamsafar. On behalf of Anushka Motion Pictures and Entertainments, Shri Narendra Shanti Kumar Firodia receives the Silver Lotus.
2: एक करुणामयी सिनेमाई कथा के माध्यम से फिल्म हमसफर दर्शाती है कि कैसे साधारण वस्तुएं गहरे व्यक्तिगत महत्व की बन जाती हैं और उनका खोना एक गहरा खालीपन उत्पन्न करता है.
3: Ladies and gentlemen, for the same film, director Shri Abhijit Arvind Dalvi is being awarded Silver Lotus. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal, how their loss opens a poignant void, sparking a heartfelt search for memory, identity, and emotional connection.
2: बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए जेबी प्रोडक्शंस को मूक फिल्म टच्ड एज वाटर के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है. जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म के एनिमेटर, निर्देशक और निर्माता श्री जोशी बेनेडिक्ट.
3: The film is recognized for its simple yet profound artistry. The film transforms grief into poetic animation, capturing love, loss and hope through graceful visuals and extraordinary cinematic simplicity. The next award for the best non-feature film promoting social and environmental values goes to Hindi

0: This funny English language film, Piplantri, a tale of eco-feminism, on behalf of Johnson Suraj Film International, Miss Garima Singh is receiving the Silver Lotus.
1: ये जो क्षेत्र है पिपलांत्री पंचायत, ये पूरी तरह मार्बल के खदानों के बीच में है।
2: बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है, आपको दिख रहा है कि
3: श्रोताओं, इसी कड़ी में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले बनी फिल्म पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म ने, जिसे प्राप्त कर रही है मिस गरिमा सिंह। यह फिल्म हिंदी, राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषाओं में है। इसे मिला है रजत कमल का सम्मान और साथ ही फिल्म के निर्देशक सूरज कुमार को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह 84 मिनट्स की एक बेहद प्रभावशाली फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित पिपलांत्री गाँव की वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। इस गाँव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनूठी और ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी।
4: नेक्स्ट इन कैटेगरी इज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, राम नामी इन हिंदी, प्रोड्यूसर बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत, रिप्रेजेंटेड बाय मिस लिनेट डिमेलो। शी इज गोइंग टू रिसीव रजत कमल। Producer Lynette DeMello accepts the Rajat Kamal for backing this striking documentary on the Ram Nami sect of Chhattisgarh. The film documents a community that tattoos sacred names across their bodies as an act of devotion and social defiance.
3: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री राम नामी समुदाय पर केंद्रित है। यह समुदाय अपनी धार्मिक आस्था और पहचान को शरीर पर राम नाम का गोदन या टैटू बनवा कर व्यक्त करने के लिए जाना जाता है। फिल्म उनके विश्वास, परंपराओं और सामुदायिक जीवन को दस्तावेजित करती है।
4: Acclaimed director Bharat Bala Ganapati receives the Rajat Kamal for best documentary Ram Nami in Hindi. Next in line is best arts culture film Mainida in Hindi. Producer is Sampreshan Multimedia, represented by Shri Atul Gangwar, and he is going to receive a Rajat Kamal.
3: श्रोताओं, मैं निदा प्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ निदा फाजली की जीवनी नहीं बल्कि उनके विचारों, संवेदनशीलता और कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश है। उनके शेर दिल को छू जाते हैं। क्या खूब लिखा है उन्होंने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और जब वे कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, तो ऐसा लगता है मानो पुरस्कार विजेताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराह रहे हों और भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि अपना अलग रास्ता चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं।
4: Next in line in the non-feature film category is best biographical historical reconstruction film Kakori in Hindi. Producer KSR Brothers and Minty Mishra, represented by Shri Jaswinder Singh, he is going to receive a Rajat Kamal.
3: श्रोताओं, इस फिल्म का विषय 1920 के दशक के ब्रिटिश भारत की ऐतिहासिक काकोरी रेल कार्यवाही है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी दौर से जुड़ी हुई है। फिल्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों से जुड़े घटनाक्रम को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
4: The same film, best biographical historical reconstruction film Kakori receives the best director award in the non-feature film category, and to receive the award comes Shri Kamlesh Kumar Mishra. He is going to receive the Rajat Kamal. Director Kamlesh Kumar Mishra wins for his meticulous historical research and sharp narrative pacing. He brings revolutionary figures to life with clarity, avoiding sensationalizing while honoring sacrifice. The jury praised its educational value and dramatic tension.
3: श्रोताओं, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संथाली भाषा की फिल्म अंगेन को, और इसके लिए निर्देशक रवि राज मुर्मू को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है। श्रोताओं, इस फिल्म में एक लोक कथा का उपयोग आधुनिक सामाजिक मुद्दों, विशेषकर महानगरों की ओर युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन को दिखाने के लिए है। यह दर्शाती है कि कैसे विकास की अंधी दौड़ युवाओं को उनकी मूल भाषा, संस्कृति और पहचान से दूर कर देती है।
4: नेक्स्ट

0: In line is the filmmaker Sumira Roy, claiming the top non-feature award, the Swarna Kamal, as both producer and director. Film Bhangar explores urban waste, informal labor, and human resilience with unyielding cinematic power. The film was unanimously hailed by the jury as a masterpiece of modern non-fiction storytelling.
1: श्रोताओं, भंगार फिल्म का केंद्र कबाड़ और उसे इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले लोगों की दुनिया है। फिल्म ऐसी वस्तुओं और लोगों पर ध्यान देती है जिन्हें समाज अक्सर महत्वहीन या बेकार मानकर नजरअंदाज कर देता है। यह फिल्म कबाड़ बीनने और उसका पुनर्चक्रण करने वाले लोगों के जीवन, श्रम और रोजगार की वास्तविकता को दर्शाती है।
0: And now,

निर्माता, निर्देशक और टेक्नीशियंस और देश विदेश से पधारे अतिथिगण, मीडिया के साथियों और भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के सभी अधिकारियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आप यहां पर पधारे और इस कार्यक्रम को गौरवमय बनाया। जूरी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की। ऑल ऑफ यू वर्क वेरी हार्ड, सॉ सो मेनी मूवीज, हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन। एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, गेटिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड इज सच अ ग्रेट ऑनर, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द विनर्स। हर फिल्म के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है। आज का सम्मान न केवल जो विजेता यहाँ पर मंच पे आ रहे हैं, बल्कि उस पूरी टीम का है जो पर्दे के पीछे अपनी मेहनत से और अपनी डिसिप्लिन से फिल्म को फिल्म के देखने जैसा बनाते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टेक्नीशियंस, सिनेमेटोग्राफर्स, ऑल ऑफ यू मेक द make it possible for the winners to come here and stand on the stage. Aaj Dada Sahib Phalke Puraskar 2024 ke vijeta Shri Anant Nag ji bhi hai. Aaj aapka vishesh abhinandan. We wish you so many congratulations. You have done great service to the film world. A very versatile talent. I have interacted with Mr. Nag. He has served the film world for more than 5 decades. Give him a huge round of applause. Standing ovation for Anant Nag ji. Great. Thank you. Thank you. आप सब जानते हैं कि जब G20 हुआ था, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को एक अलग तरीके से पूरे देश में, कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स cultural heritage of our country can be showcased to the world. That is the thought process that we have adopted in this year's NFA. The thought process is, let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar sahab ki vishv ki sabse badi pratima hai, world's highest, tallest statue hai, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। दैट गिव्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड टू कम एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल प्लेस, कम एंड एक्सपीरियंस द हेरिटेज ऑफ दिस प्लेस, कम एंड एक्सपीरियंस द हिस्टोरिक इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन आवर कंट्री व्हेन द ब्रिटिश वर थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। अब अगली बार we'll go to one more important destination. How will we select the destination? I am giving a call to all the states and union territories, select one of the most important tourist destinations in your state, tell us what improvements you'll make in it, make those improvements, and then your destination will be selected and we'll have the next round of NFA in the selected tourist destination. Is method say we will be able to move around to some of the most important tourist destinations in our country. The film world, all of you are so popular among the youngsters, among the entire country,
आप जब उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाओगे ऑब्वियसली उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का प्रमोशन अपने आप हो जाएगा और आपको भी बेनिफिट है बिकॉज यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दी यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ आर कंट्री. सो इट्स अ विन विन. दैट इज द थॉट प्रोसेस. सो दोज हु गेट इन टू नैरो पोलिटिकल डिस्कशंस आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू लुक अबव योर पोलिटिकल इंटरेस्ट एंड थिंक ऑफ आर कंट्री फर्स्ट. थिंक ऑफ द नेशन फर्स्ट. नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. लास्ट ईयर आई शेयर्ड विद यू हम किस तरह से नौजवानों के लिए एक नया टैलेंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT वी स्टार्टेड द फर्स्ट कैंपस इन मुंबई इमिडिएटली आफ्टर वेव्स एंड वेव्स वॉज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन सच अ ग्रेट समिट. एज अ फॉलो अप टू सो मेनी थिंग्स विच हैव हैपेंड आफ्टर वेव्स IICT was one of them. And I'm very happy to share with you, while the permanent campus is being constructed, in the NFDC campus building, we have started the IICT, and by now, about 380 students have already taken admissions in 13 courses. Most important point is the entire course curriculum is designed by the industry. We had promised you that this will be state of the art education.

0: building, we have started the IICT, and by now about 380 students have already taken admissions in 13 courses. Most important point is the entire course curriculum is designed by the industry. We had promised you that this will be state of the art education. हमने आपके फिल्म वर्ल्ड से हमारे प्रसून भाई जोशी को सरकार में ले लिया है दूरदर्शन में. प्रसून भाई, व्हाई डोंट यू वेव एट दी. सो नाउ ही इज विद अस. सो ही वाज ऑलवेज विद अस. नाउ वी हैव गिवन हिम अ वेरी बिग टास्क. यंग टैलेंट को, रॉ टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रसून भाई विल बी मेकिंग अ टीम, एंड आई विल बी रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट है और जो प्रेजेंट नहीं है उनमें से भी प्लीज वॉलंटियर. प्लीज दोज हु वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस जर्नी वेयर रॉ टैलेंट, वेयर गुड टैलेंट, वेयर टैलेंट विच इज हिडन इन दी विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स ऑफ आर कंट्री, उस टैलेंट को एक नया मंच मिले, उस टैलेंट को एक बड़ा स्टेज मिले, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. हेल्प करोगे? कोई वॉलंटियर्स यहाँ पे? कैन आई सी वन हैंड, टू हैंड्स, थ्री हैंड्स? ओ वाओ, ये तो बात बन गई. इतने लोग तैयार है साथ. प्रसून भाई, आपका काम आधे से ज्यादा पूरा हो गया. थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट. दूसरा है वेव्स 2027 अगले साल अक्टूबर में करेंगे. अब तक बहुत अच्छे तरीके से वेव्स का फॉलोअप चल रहा है. वेव्स बाजार में बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और अब इस अगले एडिशन का 2027 में वी विल डू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर आइडियाज, शेयर योर थॉट्स, एंड मेक वेव्स एन इंस्टीट्यूशन विच विल बी देयर फॉर द क्रिएटिव वर्ल्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप यहाँ पधारे, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय गवर्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ, आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
1: नेक्स्ट इन लाइन वी नाउ गो टू फीचर फिल्म अवार्ड्स इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. सच एनिग्मेटिक एंड कैरिश्मेटिक इज द चार्म ऑफ इंडियन सिनेमा that I cannot help but tread into my co-commentator Neelam's territory and recite these few couplets in Hindi. Zindagi ye aina hai aur cinema us aina-e-wajood par chamakti hui roshni. Har parda ek daastan kehta hai, har tasveer mein ek fasana hai. Kahin ashk hai, kahin muskurahat, kahin ek khwab suhana hai. Aur inhi daastanon ki darkhanon mein gungunata hamara Hindustan hai. Let's now go on to the feature films category. Special mention about two films, Maiya Jahan in Thalem, Tamil. Sound mix engineer Shri Suren Ji would be now receiving a certificate. Sound engineer Suren Ji receives a special mention certificate for his delicate acoustic mixing in Maiya Jahan. His sound mix captures the natural ambience of rural landscapes and intimate dialogue. The subtle sound design deepens the film's emotional intimacy. Second in the category of special mention is the film Captain Miller in Tamil. Actor Shri Dhanush is coming on to the stage to receive this award. Superstar Dhanush earns a special mention certificate for his intense, raw and fiery performance in Captain Miller.
2: श्रोताओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों के पुरस्कार का समय आ गया है, जिसमें दो फिल्मों को चुना गया है, तुलु फिल्म और गढ़वाली फिल्म. सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार मिला है इम्बू को, जिसके निर्माता पिक्चर स्टूडियोज की ओर से श्री प्रशांता कुमार बी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान, और फिल्म के निर्देशक शिवाध्वज शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान. श्रोताओं, यह फिल्म आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है, जो मुख्य रूप से तीन संदेश देती है.

0: है। केवल स्मार्टफोन खरीद लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग की समझ होना बेहद जरूरी है। यह फिल्म साइबर स्कैमर्स के तौर तरीकों को उजागर करती है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक जहां एक तरफ विकास का जरिया है, वहीं अगर उसे बिना सोचे समझे अपनाया जाए तो वह हमारी पारंपरिक जीवन शैली और मानसिक शांति को कैसे बर्बाद कर सकती है।
1: Producer Sunil Nayak takes home the Rajat Kamal for bringing Garhwali culture to the national stage. Dholi film centers around traditional folk musicians and their socio-economic struggles in the Himalayan hills. The film was commended for its strong cultural preservation value.
0: श्रोताओं, ढोली की कहानी उत्तराखंड की पारंपरिक ढोल सागर यानी ढोल बजाने की प्राचीन कला और इसे जीवित रखने वाले ढोली समुदाय के संघर्ष पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य सामाजिक या धार्मिक ढोल के बिना पूरा नहीं होता।
1: बेस्ट गढ़वाली फिल्म ढोली डायरेक्टर श्री दिनेश पुंडलिक भोसले रिसीव्स अ रजत कमल। He wins for his sensitive portrayal of mountain life and artistic heritage. His direction captures breathtaking Himalayan landscapes alongside poignant human drama. The film gives a powerful voice to Uttarakhand's regional storytellers. And the next in line is best Telugu film Kamiti Kurallovu. Producer Pink Elephant Pictures and Sri Radha Damodara Studios, represented by Miss Niharika Konidela.
0: श्रोताओं, कमेटी कुरोल्लू आंध्र प्रदेश के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है जिसमें बचपन के दोस्तों के बीच के गाढ़े रिश्तों, आपसी मनमुटाव, ग्रामीण राजनीति और समय के साथ बदलते सामाजिक समीकरणों की कहानी कहती है।
1: The same film also receives the best director award. Shri Yadu Yamsi wins for his dynamic ensemble staging and nostalgic narrative framing. He manages a large cast of newcomers while maintaining crisp dramatic control. His direction captures authentic rural warmth and emotional coming of age moments. Next in line is the best Odia film Lahari. Producer Jilik Motion Pictures, represented by Miss Jilik Bhattacharji, is on the stage to receive the Rajat Kamal.
0: श्रोताओं, इसी पिक्चर के निर्देशक अमृत्य भट्टाचार्य को भी रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है। यह एक बेहद प्रशंसित और समीक्षकों द्वारा सराही गई ओडिया फीचर फिल्म है। इस फिल्म को कलात्मक सिनेमा के क्षेत्र में अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
1: Lahari delves into human relationships, artistic passions and coastal life realities. The film represents a bold aesthetic leap forward for contemporary Odia cinema. The film stands as a triumph of independent artistic cinema. Next in line is the best Marathi film, Mukkam Post Bombilwale Wadi. Producer Vivek Films, represented by Shri Bharat Dilip Shitore. He is there to receive the Rajat Kamal.
0: श्रोताओं, यह फिल्म 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक मजेदार काल्पनिक कहानी है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर गलती से कोंकण के एक छोटे से गांव बॉम्बिलवाड़ी में आ जाता है। इसके बाद गांव के सीधे साधे लोग और एक स्थानीय नाटक मंडली मिलकर हिटलर का सामना अपने अनोखे और हास्यास्पद अंदाज में करते हैं, जिससे पूरी फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है।
1: Next film in the language category is best Manipuri film Sunita, producer Skyline Pictures and Company, represented by Shri Yomanam Brojen Singh. Producer Yomanam Brojen Singh accepts the Rajat Kamal for backing this powerful social drama. Sunita highlights female resilience, social struggles and cultural endurance in Manipur. The film brings vital stories from the northeast to national prominence.
0: श्रोताओं, यह फिल्म श्रीमती मोइंगा मोइरांगतम सुनीता देवी के वास्तविक जीवन की सच्ची घटनाओं और उनके संघर्षों पर बनी एक बायोपिक है जिसमें उनका अपनी दृष्टिहीनता से संघर्ष, शिक्षा के लिए दृढ़ता और पारिवारिक चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणादायक यात्रा दिखाई गई है।
1: डायरेक्टर श्री यमुनम अजीत सिंह ऑल्सो रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म सुनीता। He wins for his realistic, compassionate and directorial approach. He draws deeply affecting performances from his cast while depicting real social challenges. Next in line is the best Malayalam film, Feminichi Fatima, producer 1001 Stories and AFD Cinemas, represented by Shri Tamar Mon Karuanta Vallapil.
0: श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी फातिमा नाम की एक आम गृहिणी

0: इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घर और समाज की पितृसत्तात्मक सोच और पाबंदियों से आजाद होने की कोशिश करती है। ज्यूरी ने घरेलू पितृसत्ता पर इसके मजाकिया और सटीक कटाक्ष की सराहना की है।
1: निर्माता फ्लोइंग बॉन जोवी फिल्म्स एलएलपी आरएस क्रिएशंस एंड कठपुतली आर्ट्स एंड फिल्म्स की तरफ से शिशरत मित्तल को रजत कमल का सम्मान।
2: हाय जैक, हाउ रे ग्रेसी।
3: द स्टोरी ब्यूटिफुली ब्लेंड्स ग्रीफ, लव एंड कल्चरल आइडेंटिटी विद रिमार्केबल सेंसिटिविटी। द फिल्म ऑफर्स डीपली रूटेड नैरेटिव मार्किंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर कोंकणी सिनेमा। एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म श्री राधेश्याम पीपलवा इज रिसीविंग द सिल्वर लोटस।
1: फिल्म बॉग असुम को एक ऐसी भावनात्मक कहानी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है जो दुख, प्रेम और सांस्कृतिक पहचान की बेहद संवेदनशीलता से सामने लाती है। अपनी जड़ों से जुड़ी ये फिल्म कोंकणी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
3: Also, the director of the film, श्री Agnello Braganza, being awarded with Silver Lotus.
1: बॉग असुम कोंकणी सिनेमा में अपनी अनूठी कहानी और भावपूर्ण अंदाज के कारण एक मील का पत्थर साबित हुई है। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म मिथ्या को प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री सुमंत भट्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए।
3: The film is recognized for its profound portrayal of childhood trauma, angst, grief and fragile illusions of stability in fractured society. The award for the best Hindi film is awarded to Shrikant, produced by Super Cassettes Industries Private Limited, Shock and Cheese Films Production. Shri Bhushan Kumar receives the Silver Lotus.
4: What is your name, young man?
5: Sir, my name is Shrikant Bola.
1: सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत दृष्टिबाधित उद्योगपति की जीवनी पर आधारित एक प्रेरणादायक हिंदी फिल्म है जो इंसानी जज्बे की जीत के गहन मानवीय चित्रण के लिए प्राप्त कर रही है राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री तुषार हीरानंदा ने।
3: Shrikant transcends the conventions of biographical drama to deliver a story of hope with honesty and grace. The next award is for Best Gujarati Film, conferred to Maran, produced by Cineman Productions Limited, and Sri Amit Desai to receive the Silver Lotus.
6: Beauty and a Beast, Bhega Tha.
1: Film Maran, अन्याय का सामना करती महिलाओं के साहस, दृढ़ता और एकजुटता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है और समकालीन गुजराती सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिषेक जैन को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है।
3: The film is recognized for its bold exploration of gender violence and patriarchal oppression through a powerful narrative. Thank you, Honorable President and distinguished guests. May I now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, to address the gathering.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कार्यक्रम में हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार, फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री जयराज, नॉन फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री असीम सिन्हा, बेस्ट फिल्म लेखन ज्यूरी के अध्यक्ष श्री ए चंद्रशेखर, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के

मित्र सभी को मेरा नमस्कार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती गुजरात में पधारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया तथा आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। गुजरात गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। मित्रों, अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जिस भारत को आज हम देखते हैं वो भी नहीं होता। सरदार साहब ने दृढ़ संकल्प से तत्कालीन रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके एक और अखंड भारत का निर्माण किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक और अखंड भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार साहब के महत्वपूर्ण योगदान को इस एकता नगर में लोह पुरुष सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण से यथा योग्य गौरव दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का एकता नगर में पहली बार आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की प्रेरक उपस्थिति में आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है। आज एकता नगर में देश के फिल्म जगत का यह राष्ट्रीय सम्मान एक और संदेशा भी देता है। हमारी एकता जितनी विराट है उतनी ही हमारे सर्जकों फिल्म मेकर्स की सृजन शक्ति भी विशाल है। सिनेमा केवल मनोरंजन की ही नहीं परंतु समाज का प्रतिबिंब है, संस्कृति और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सक्षम मंच है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई है। इस पहचान को और गति देने में भारतीय सिनेमा उद्योग सॉफ्ट पावर की बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक फिल्म भाषा की सरहद पार कर सकती है, कलाकार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं, एक कहानी विश्व को भारत के साथ जोड़ सकती है। ऐसी ही विविध भाषाओं, संस्कृतियों और भारत के कोने कोने में मौजूद प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित करने का आज का अवसर है। श्री ममूटी, श्री कार्तिक आर्यन, श्रीमती यामी गौतम हमारे बाल कलाकारों और इन प्रेरणादायी कहानियों के पर्दे पर साकार करने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, लेखक और टेक्नीशियनों को अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह गुजरात के लिए दुगुनी खुशी का अवसर है क्योंकि गुजराती फिल्म मारण को भी बेस्ट गुजराती फिल्म का पुरस्कार मिल रहा है। सिनेमा जगत के इतने दिग्गज रचनाकारों का गुजरात की धरती पर संगम केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि नई रचनात्मक यात्रा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उद्योग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी तथा सेमीकॉन जैसे इमर्जिंग सेक्टर तथा टूरिज्म में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अब इस डेवलपमेंट जर्नी में क्रिएटिव इकोनॉमी को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने की मंशा है। गुजरात के पास प्रकृति और विरासत का अद्भुत खजाना है। कच्छ का सुंदर सफेद रण है, नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी पवित्र नदियाएं हैं, गिरनार और सापुतारा जैसे रमणीय पर्वत हैं, एशियाटिक लायन और गिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एट्रैक्शन है, धौलावीरा और लोथल जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो देश के सबसे लंबी 2300 किलोमीटर से अधिक की समुद्री तटरेखा भी गुजरात के पास है। गुजरात अपनी पौराणिक विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं, अनूठी संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध गरबा, लोक मेले और उत्सवों से समृद्ध हैं। गुजरात के अद्भुत लोकेशन के कारण ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर, सत्य प्रेम की कथा, कुसुम्बी को कसुम्बो,
टाइपो

6, फोर्स 3 और लालो जैसी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सभी निर्माताओं और निर्देशकों को हमारा निमंत्रण है, गुजरात के इन विविधपूर्ण पर्यटन लोकेशन का अनुभव कीजिए और अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन बनाइए। गुजरात फिल्म निर्माताओं के लिए रिक्वायर्ड परमिशन, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोड्यूसर फ्रेंडली अप्रोच जैसे इनिशिएटिव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात को फिल्म प्रोडक्शन तथा ओटीटी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने के उद्देश्य गुजरात सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। हमारा प्रयास है कि गुजरात में फिल्मों के शूटिंग लोकेशन से आगे बढ़कर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग क्षेत्र का पूरा इकोसिस्टम बने। हम एक ऐसी संगीन संरचना बनाना चाहते हैं कि गुजरात का युवा अपने शहर या गांव में रहकर वर्ल्ड क्लास फिल्म, एनिमेशन, VFX या डिजिटल कनेक्ट पर काम कर सके।

0: की अपेक्षा करता हूँ। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: श्रोताओं, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है और प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसकी श्रेणी में अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का।
2: The film is Ryan, producer Sun TV Network Limited, represented by Mrs. Kaveri Kalanidhi. She would be there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, रायन निर्माता सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की ओर से श्रीमती कावेरी कलानिधि को रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है और निर्देशक धनुष को भी रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है।
2: The production combines high technical scale with visceral family drama. It stands as a commercial and critical highlight of modern Tamil cinema. Feature film best in the category of the language Tamil is Ryan, and the director is Shri Dhanush. Dhanush claims his second award of the ceremony, winning Best Director for guiding his 50th landmark film. His directorial vision crafts intense action, deep brotherhood ties, and relentless moral conflict. His staging proves his commanding authority both behind and in front of the camera. The next category is Best Bengali Film. Chalchitra Ikon, producer Anjan Dutt Production, represented by Shri Neel Dutt.
1: श्रोताओं, यह फिल्म निर्देशक अंजन दत्त की खुद की यादों और उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह फिल्म उनके द्वारा उनके गुरु भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता मृणाल सेन के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि है।
2: Producer Neel Dutt accepted the award for this deeply personal homage to legendary auteur Mrinal Sen. The film explores the mentor-disciple relationship in 1980s Kolkata film circles. It is also receiving the Best Director Award for the same film, Chalchitra Ikon. And here comes Shri Anjan Dutt. Veteran artist Anjan Dutt wins for directing a deeply reflective, semi-autobiographical tribute to his mentor.
1: Shrotaon, up. श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म में जुई फूल को दिया जा रहा है सम्मान। इसके निर्माता श्री जादूमोनी दत्ता, मिस रीता दत्ता और मिस नंदिनी शर्मा दत्ता। मिस रीता दत्ता रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। इसे फिल्म के निर्देशक श्री जादूमोनी दत्ता को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म एक असमिया विधवा और एक नागा महिला के बीच के मानवीय रिश्तों और मातृत्व की एक बेहद संवेदनशील कहानी को दर्शाती है।
2: Best Assamese film Joyful receives awards for producer and also for the director. Shri Jadumani Datta is also there to receive the award as a director. It is one for guiding Joyful with deep compassion and documentary-like realism. The camera work focuses on ordinary lives caught in territorial tensions, finding hope in shared humanity. The direction delivers a quiet yet unforgettable emotional impact. Next in line is the best action direction film Maharaja in Tamil language wins the best action direction film award. Stunt choreographer Shri Anil Arasu will be there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन में तमिल पिक्चर महाराजा के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिल रहा है अनिल अरसु को। इन्हें मंच पर पुरस्कार ग्रहण किए करते हुए हम देख सकते हैं।
2: The next in line is the award for the best choreography, and in Hindi is 3-2 film choreographer Shri Vijay Ganguly comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, गीत आज की रात के लिए विजय गांगुली को मिल रहा है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड। सिनेमा में कभी एक धुन कहानी कहती है, कभी एक शब्द और कभी एक कदम।
2: The sequence became a national pop culture moment demonstrating choreography's power.

0: In mainstream cinema, here's Vijay Ganguly receiving the Rajat Kamal. Next in line is the award for best lyrics in Hindi for the film Maidan. Lyricist Shri Manoj Muntashir receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, मैदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मनोज मुंतशिर को दिया जा रहा है पुरस्कार. फिल्म में यह गाना कठिन परिस्थितियों में हौसला और लचीलापन बनाए रखने की भावना को दर्शाता है.
0: The poetic lyrics that capture national pride and sporting grit, Manoj Muntashir comes on the stage and receives the award for his lyrics in the film Maidan. Next in the category is Best Music Direction Background Score. Amaran, film Tamil, music director Shri G.V. Prakash Kumar, he is there to receive the award on stage.
1: Film अमरन, तमिल फिल्म अमरन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जी वी प्रकाश कुमार के लिए को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान.
0: द पावरफुली एंड इमोशनली चार्ज्ड बैकग्राउंड स्कोर रियली टचेस द हार्ट. फिल्म अमरन, म्यूजिक डायरेक्टर श्री जी वी प्रकाश कुमार रिसीविंग द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड. नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स फॉर द फिल्म Article 370, music director Shri Shashwat Sachdev comes on stage to receive this award.
1: श्रोताओं, संगीत निर्देशन और गीत में अब मिल रहा है आर्टिकल 370 के लिए गीतों के संगीत निर्देशन के लिए शाश्वत सचदेव को रजत कमल का सम्मान.
0: The compositions of this film combine modern orchestral arrangements with patriotic vocal lines. The songs elevate the film's narrative momentum without distracting from the tension. Next in line is the category Best Makeup for Kamiti Kurallu Telugu Film. Makeup artist Shri Pasupuleti Ravi Kumar comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई नाम शायद फिल्म देखते समय दिखाई नहीं देते, लेकिन पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है उसकी नींव इन्हीं लोगों के काम से तैयार होती है. और सर्वश्रेष्ठ मेकअप कमेटी कुरुलु के लिए पी रवि कुमार को मिलता है रजत कमल का सम्मान.
0: द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2. तेलुगु फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री शीतल इकबाल चंद शर्मा रिसीव्स द अवार्ड. Shital Iqbal Chand Sharma wins for creating distinct, larger-than-life character attire rooted in rustic textures. His designs give distinct visual identity to rival factions and regional cultural attire. The costumes played a massive role in shaping the film's iconic visual style. The next award is Best Costume Design again. Pushpa the Rule Part 2, Telugu costume designer Miss Dipali Noor also receives the co-award.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दो डिजाइनर्स को सम्मानित किया गया है. पुष्पा द रूल पार्ट 2 में दीपाली नूर और पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लिए ही शीतल शर्मा को रजत कमल से सम्मानित किया गया है.
0: नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कल्कि 2898 एडी. In Telugu, production designer Shri Nitin Zihani Chaudhary receives the award for this film Kalki 2898 AD, Best Production Design.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जो तमिल में बनी है मूवी कल्कि 2898 AD, तेलुगु मूवी, नितिन जिहानी चौधरी को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान.
0: और आइए अब आपको स्टेज पे ले चलते हैं, वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है.
2: The award recognizes masterful crafting of pace, narrative flow, emotional depth and complex action sequences.
3: और अब बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड हिंदी फिल्म भूल भुलैया पार्ट 3 के लिए श्री मानस चौधरी को प्रदान किया जा रहा है. आप आ रहे हैं रजत कमल.
2: The sound design serves as a vital narrative and psychological tool that enhances the film's horror beyond conventional jump scares through the use of reverberant echoes. Ladies and gentlemen, the award for the best screenplay writer original goes to Shri Bandareddy Sukumar for Telugu film Pushpa, The Rule Part 2. Shri Sukumar is being conferred with Silver Lotus. The film presents a compelling and intricately crafted screenplay that masterfully weaves character, conflict, and emotions into a powerful narrative.
3: Best screenplay writer adapted ka puraskar Marathi film Swar Gandharv Sudhir Phadke ke liye Shri Yogesh Shivram Deshpande prapt kar rahe hain pratishthit Rajat Kamal.
4: Je majha manala bhavta te majha sangeetatun majha galyatun utarta.
2: For outstanding achievement in adapted screenwriting, authentic character development, and the profound emotional and dramatic impact of real-life legendary singer.
3: सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले लेखन संवाद के लिए तेलुगु फिल्म लकी भास्कर के डायलॉग राइटर श्री वेंकी अटलूरी के लिए रजत कमल.
5: నా పేరు భాస్కర్ కుమార్. నా జీతం 6,000 రూపాయలు. బోర్డర్లైన్ దరిద్రంలో బ్రతుకుతున్నా, నేనే కావాలని నన్ను చేసుకుంది.
2: The dialogues that blend philosophical insight with emotional authenticity. The award for the best cinematography goes to Shri Shehnaz Jalal for Malayalam film Brahma Yugam. He is being awarded with Silver Lotus.

0: The luminous black and white cinematography transforms light and shadow into powerful storytelling tools.
1: सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए श्री अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए रजत कमल का सम्मान।

0: गीत नवसाची गोराई माजी में उनकी शक्तिशाली प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में निपुणता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण, पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी।
1: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मान्य श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मान्य डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री चंचल कुमार जी, फीचर फिल्मों की ज्यूरी के अध्यक्ष माननीय श्री जयराम जी, नॉन फीचर फिल्मों के ज्यूरी के अध्यक्ष माननीय श्री असीम सिन्हा जी, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की ज्यूरी के अध्यक्ष माननीय श्री ए के चंद्रशेखर जी और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले माननीय श्री अनंत नाग जी, फिल्म जगत के महानुभाव तथा देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं, भाइयों और बहनों, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, फिल्म पुरस्कार लगभग दिल्ली में होते थे। पहली बार मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर प्रथम बार इस फिल्म पुरस्कार को स्थानांतरित किया, तो वो भी गुजरात में किया और गुजरात में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वास्तव में 562 रियासतों में बटा देश आजाद हो भी गया था। यदि वो इन खंडों में बटा होता तो आज भारत कैसा होता अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लौह पुरुष जिनके व्यक्तित्व को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो मान दिया, वो सम्मान दिया, जिसके वो सही अर्थों में अधिकारी थे, आज यह बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थल पूरे देश के लोगों के लिए भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का केंद्र बन चुका है। आप फिल्म जगत के लोग हैं, आप अपनी विधा के द्वारा जिस सरलता से, जिस सहजता से समाज की हर वर्ग की चुनौतियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज फिल्म जगत ने भारत की सभी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया है, भारत की राष्ट्रभाषा से देश को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे से पहचान दिलाने का काम किया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटा सा निवेदन भी मैं जरूर करूंगा, भाई और बहनों, हम मनोरंजन की दुनिया में आज बहुत तनाव में दुनिया गुजर रही है, बहुत डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी के साथ गुजरात प्रांत एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें नेतृत्व है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हम सब लोग हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमजोर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको कोई सुनता नहीं था, आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, पेनक्रियाज फेल होती कोई जानता नहीं था। हम जितने बैठे, किसी के पिताजी ने कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज हम सब लाइन में बैठे हैं। 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, पेनक्रियाज फेल हो रही, कारण के बिना कार्य नहीं होता। और इसका बहुत बड़ा कारण आज हमारा जो पर्यावरण है वो तेजी से बिगड़ रहा है। आपने और हमने फिल्मों के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी तरीके आ सकें वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा खान पान जिससे लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सकें। आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। यदि भारत अपनी पुरातन सांस्कृतिक परंपरा जो सारे देश में एक जैसी है, आपके माध्यम से भारत की संस्कृति के वो मूल सूत्र जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर जुड़े हुए थे, जो शोच संतोष तप स्वाध्याय पर जुड़े थे, हमारी फिल्मों के माध्यम से मार धाड़ का रूप थोड़ा सा हल्का करके लोगों में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, और हम एक दूसरे के काम आ सकें और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ एक एक मेरे देश का व्यक्ति आगे बढ़े, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आज जो युवा पीढ़ी के लोग मंच पर आए, भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने जिनको आज बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया है, इस दिशा में यदि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित कर पाए, निर्व्यसनी कर पाए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सोचने का पैदा कर पाए, ये फिल्म जगत के माध्यम से, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरती है, सहज भाव से आप कठिन विषय को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मैं पुनः आप सब गुजरात की इस पावन धरा पर आए आपका अभिनंदन करते हुए आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं और सबको पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के संबोधन को, और इसके बाद कार्यक्रम फिर से पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ चला है। माननीय राष्ट्रपति जी अन्य डिग्निटरीज के साथ पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधार गई हैं। क्रम चल रहा है संगीत और गायन के पुरस्कार का। अब समारोह में संगीत का रंग घुल गया है। सिनेमा की कहानी आंखों से शुरू होती है लेकिन अक्सर दिल तक पहुंचती है संगीत के रास्ते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है वैकोम विजय लक्ष्मी को फिल्म एआरएम के लिए, जो मलयालम फिल्म है और गीत है अंगुवाना कोनिलू।
3: वैकोम विजय लक्ष्मी अर्न्स रजत कमल फॉर कमांडिंग पिच परफेक्ट वोकल डिलीवरी ऑफ अंगुवाना कोनिलू। Her unique vocal timbre adds mythic scale and emotional depth to a period fantasy adventure. Her performance stands out as a high point in film music. Next in line is Best Child Artist, Onko Kikothi in Bengali. Child Artist, Miss Geeta Shri Chakravarti receives the award.
2: Shrotao, category hai Sarvashrestha Bal Kalakar ki, aur aapko bata de कि ये नई पीढ़ी मंच पर खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसमें दो पिक्चरों के लिए बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। टोटल 5 बच्चों को इसमें पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें अंकों की कोथोन यानी क्या गणित कठिन है के लिए जो बंगाली फिल्म है उसके लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। सबसे पहले आ रही हैं गीताश्री चक्रवर्ती जो अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं।
3: यंग गीताश्री चक्रवर्ती रिसीव्स रजत कमल फॉर अ हार्टवार्मिंग कंप्लीटली नेचुरल परफॉर्मेंस। शी पोर्ट्रेज अ स्कूल चाइल्ड डीलिंग विद क्लासरूम प्रेशर्स एंड चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी विद इनोसेंस। हर स्क्रीन प्रेजेंस ब्रिंग्स जेन्युइन चार्म टू द बंगाली फीचर। नेक्स्ट इन लाइन इज द चाइल्ड आर्टिस्ट Tapamoy Dev shares top child artist honors for his expressive and witty performance. His comic timing and uninhibited acting bring light-hearted energy to child education themes. The jury praised his effortless comfort in front of the camera. And third in line, best child artist, Anko Ki Kathin in Bengali, is Sri Riddhiman Banerjee.
2: Shrotao, 35 चिन्ना कथा काडू तेलुगु फिल्म के लिए अरुण देव पोथुला को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। और मूवी मिथ्या यानी कन्नड़ मूवी मिथ्या के लिए आतिश एस शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। आज इन छोटे कलाकारों की आंखों में जो चमक है शायद वही कल भारतीय सिनेमा की पहली किरण बनेगी।
3: श्री अरुण देव पोथुला विंस रजत कमल फॉर पोर्ट्रेइंग अ यंग बॉय स्ट्रगलिंग विद स्कूल मैथमेटिक्स। हिज परफॉर्मेंस कैप्चर्स फ्रस्ट्रेशन इनोसेंस एंड डिटरमिनेशन विद एब्सोल्यूट सिंसियरिटी। ही एंकर्स द फिल्म्स नैरेटिव हार्ट अलोंगसाइड वेटरन एक्टर्स। एंड नेक्स्ट इन लाइन इज द चाइल्ड आर्टिस्ट श्री आतिश एस शेट्टी। He is receiving the Best Child Artist Award for the Kannada film Mithya. Atish S. Shetty earns national acclaim for his hauntingly quiet portrayal of an 11-year-old orphan. Handling grief, confusion and subtle acceptance without dramatic melodrama, his eyes carry the film's emotional weight. His performance is a masterclass in child acting. Next in line is the Best Actress in a Supporting Role. Kannada film Mithya supporting actress Miss Rupa Shri Varakadi receives the Rajat Kamal.
2: श्रोताओं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को मिला है। कन्नड़ा फिल्म मिथ्या के लिए रूपश्री वरकाड़ी को मिलता है रजत कमल का सम्मान और दूसरी फिल्म तमिल महाराजा के लिए सचना नामिदास को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं 2 अलग भाषाएं 2 अलग फिल्में लेकिन सम्मान का मंच एक, यही भारतीय सिनेमा की असली तस्वीर है।
3: Both the supporting actresses Ms. Rupashri Varkadi and Ms. Sanchana Namidas have brought glitters to regional cinema for their supporting role in the films Mithya and Maharaja in Kannada and Tamil language respectively. Next, best actor in supporting role would be for the film Bhakshak in Hindi, supporting actor one and only Shri Sanjay Mishra.
2: श्रोताओं अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो मिल रहा है संजय मिश्रा को। अब मंच पर एक ऐसा अभिनेता जिनके चेहरे को देखते ही दर्शक अनेक यादगार चरित्रों को याद कर लेते हैं। भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा। संजय मिश्रा का सिनेमा सफर हमें बताता है कि अभिनेता की महानता केवल मुख्य भूमिका में नहीं होती, कभी कभी कुछ मिनट का चरित्र भी पूरी फिल्म की स्मृति बन जाता है। और आज उस अभिनय को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
3: Sanjay Mishra's performance as a weary yet courageous ground reporter brings quiet dignity, humor and moral resolve to an investigative journalism drama. His character serves as the conscience of hard-hitting story. And the next in line is the best actress in a leading role award goes to Yami Gautam Dar for the film Article 370 in Hindi. Yami Dar wins the prestigious Best Actress Award for her intense portrayal of intelligence officer Zuni Haksar. She leads a political thriller with sharp authority, physical discipline and emotional restraint.
2: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी यामी गौतम एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अलग अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। विकी डोनर से शुरुआत, फिर काबिल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2 अ थर्सडे और अब आर्टिकल 370।
3: Next in the category is the best actor in a leading role. Now the dais is shared by two great champions of acting. First comes for the movie Chandu Champion in Hindi, actor Shri Karthik Aryan. He earns a historic shared award with the one and only Shri Mammootty for the film Brahmayugam in Malayalam.
2: श्रोताओं मंच पर हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन जिन्होंने प्यार का पंचनामा से लोकप्रियता पाई, सोनू के टीटू की स्वीटी से मजबूत पहचान, भूल भुलैया 2 से बड़ी व्यावसायिक सफलता और अब चंदू चैंपियन में एक बिल्कुल अलग चुनौतीपूर्ण भूमिका। इसके बाद मिल रहा है मम्मूटी को बेस्ट एक्टर का सम्मान।
3: Screen legend Mammootty shares the best actor honor for his chilling performance as Koduman Potti. Operating in a monochrome folk horror setting, his vocal modulation, posture and sinister charm deliver an acting masterclass. It stands as another crown jewel in his multi-decade career. Next in line is the best direction award for the Tamil film Amaran. Director Shri Rajkumar Periyaswamy receives the Swarna Kamal.
2: श्रोताओं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिल रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन राजकुमार पेरियासामी। यह फिल्म भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन और उनकी वीरता पर आधारित है।
3: राजकुमार पेरियासामी इन द फिल्म अमरन, his directorial vision honors real life heroes with aesthetic brilliance and dignity. He balances authentic tactical military action with tender personal storytelling. Next is the category of best children's film. 35 Chinna Kathakodu, Telugu film, producer S Originals and Walchair Productions, represented by Shri Srujan Yarabolu.

0: is for producer as also the director. Best children's film 35 Chinna Kathakodu. Producer S Originals and Walter Productions are followed by director Sri Nandakishore Imani. Director Nandakishore Imani shares the Swarna Kamal for directing an engaging narrative about overcoming learning fears. His light-hearted direction treats children with dignity while delivering a vital message on empathy in education. The next is the category of best feature film promoting social values, and the film is Captain Miller in Tamil. Producer Satya Jyoti Films, represented by Shri Tyagarajan TG, comes on to receive the Rajat Kamal.
1: जी हाँ श्रोताओं, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म अब पुरस्कार मिल रहा है तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को। तमिल सिनेमा की इस फिल्म के निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। मंच पर सम्मान ग्रहण किया जा रहा है।
0: Producer Tyagarajan accepts the Rajat Kamal for his scale, epic tackling operation, caste barriers and freedom struggle story. Next in category is the best feature film promoting social values. Captain Miller in the film in Tamil receives the best director award. Shri Arun Matheshwaran comes on stage. He wins for crafting an uncompromising historical revolution drama. His staging blends cinematic scale with strong socio-political commentary against systemic oppression. His direction delivers visceral excitement alongside meaningful themes.
1: Shudau, अब बारी है लोकप्रिय एवं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो गया है तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को। बारी है उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के भविष्य और हमारी पौराणिक कल्पनाओं को एक विशाल सिनेमाई संसार से जोड़ने का प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है कल की 2898 AD, जिनके निर्देशक हैं नाग अश्विन सिंह रेड्डी, इन्हें जाता है स्वर्ण कमल का पुरस्कार।
0: The wholesome entertainer Kalki 2898 AD receives the award for best producer and director, both received respectively by Shri Chalasani Ashwini Dutt and Shri Nag Ashwin Singh Reddy. Next in line is the best debut film of a director. Swatantra Veer Savarkar in Hindi, directed by Shri Randeep Hooda, wins the honors.
1: Shrotao, Sarvashrestha Navodit Nirdeshak का अवार्ड मिला है रणदीप हुड्डा को, एक ऐसा नाम जिसे दर्शक अभिनेता के रूप में वर्षों से जानते हैं, लेकिन आज उनकी पहचान के साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने हाईवे, सरबजीत, रंग रसिया और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई, और आज कैमरे के सामने खड़ा होने वाला यही कलाकार कैमरे के पीछे की अपनी दृष्टि के लिए सम्मानित हो रहा है।
0: After the best debut director comes the turn of the best feature film, and that is the Hindi feature film Article 370. Producer Geo Studios and B62 Studios, represented by Shri Aditya Dhar, is going to receive the award. Producer Aditya Dhar receives Indian cinema's top prize, the Swarna Kamal, for best feature film. The production delivers a high-stakes political thriller examining complex national intelligence operations. It was lauded for its high technical finish, research and cinematic tension. And next in line is the best feature film Article 370 Hindi director Shri Aditya Suhas Jambale.
1: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 घोषणा हो चुकी है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल जाता है आर्टिकल 370 को। फिल्म के निर्माता हैं जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज, और इनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री आदित्य धर, और निर्देशक हैं आदित्य सुहास जम्भाले।
0: Director Aditya Suhas Jambale just received the Swarna Kamal for directing the best feature film of the year. He handled complex procedural drama with narrative clarity, suspense and technical discipline. And now all listeners, we have arrived at the sacred high point of the ceremony. द एंटायर गैदरिंग ऑफ 1000 डिग्निटरीज इन दिस जर्मन डोम हैज रीजन टू हिज फीट अ रोर ऑफ स्टैंडिंग अप्लॉज वुड बी फॉलोइंग रिवर्बरेटिंग अक्रॉस द पेविलियन दिस इज द मोमेंट

0: conferment of Indian cinema's supreme lifetime honor, the Dada Saheb Phalke Award, instituted by the Union government in 1969 to commemorate Dundiraj Govind Phalke, the visionary patriarch who dared to dream that Indian faces can see the screen a world over. It carries the Swan Kamal medallion, a hand-woven Kashmiri shawl, and a cash purse of 15 lakh rupees. And this year's Dada Saheb Phalke awardee is Shri Anant Nag.
1: जी हाँ श्रोताओं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार मिल रहा है अनंतनाग को। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने 1970 के दशक से लगातार अभिनय किया और 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उनका योगदान कई भारतीय भाषाओं तक फैला। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में अंकुर और लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक मालगुडी डेज शामिल हैं। उन्हें 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 5 कर्नाटका स्टेट बेस्ट एक्टर अवार्ड सहित सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें 2025 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।
0: For over 50 uninterrupted years, Anant Nag has stood as the definitive master of naturalistic acting, an artist who proved that true cinematic power does not require theatrical thunder or exaggerated artifice, but a luminous, quiet truth. Discovered on the Mumbai theatre stage and brought to celluloid by the maestro Shyam Benegal, Anant Nag became the undisputed face of the Indian parallel cinema movement. In landmark Hindi classics such as Ankur, Nishant, Manthan, Bhumika, Kandura and Kalyug, he brought an unprecedented psychologically forensic nuance to complex roles portraying feudal arrogance, bureaucratic moral dilemmas and human vulnerability. Simultaneously, he became the soul of Kannada cinema. From profound philosophical literary adaptations like GVIS classical musical masterpiece Hum Sagithi, P. Lankesh Pallavi, and the cinematic adaptations of Jnanpith laureate Dr. Shivaram Karan, to redefining middle-class comedy with unforgettable warmth in films like Ganeshna Madhuve, Gauri Ganesha, and Belandigala Bale. His versatility has never been matched. In modern contemporary cinema, his dignified patriarchal presence in KGF Chapter 1 and Rishabh Shetty's Sarkari Hi Prashale continues to captivate young generations. And here's actor Anant Nag, who has come along with his wife Gayatri, who is now walking to the screen to receive the award from Honorable President Madam. 1978 में भूमिका तथा 1981 में द अवार्ड ऑनर्स अ ट्रू टाइटन ऑफ इंडियन सिनेमा. द एंटायर ऑडिटोरियम एट एकता नगर स्टैंड्स इन ओवेशन एज लेजेंडरी एक्टर श्री अनंत नाग इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ स्टेज रिसीविंग द दादा साहेब फाल्के अवार्ड. देयर इज अ ब्रीफ फिल्म फॉर 5 मिनट्स शोन about Anant Nag, which is being displayed on the screen right now as his various characters are being portrayed on the screen. We will go through the history, reminiscing those times of Malgudi days and the film Kalyug, where he portrayed an aristocratic businessman or a loving male character with Simi Garewal. He has received Karnataka State Best Actor Award, Filmfare Awards, and Karnataka Rajyotsava Award, Karnataka Sahitya Academy Award, Karnataka State Lifetime Achievement Award, and now is the time for him to achieve the Dada Saheb Phalke Award. He walks to the screen and receives the award from the president as the hall is coming up in thunderous applause. His various characters are being depicted on screen. Let's now go on to the actual stage to listen from him.
2: University ने सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें ऑनररी डॉक्टोरेट की उपाधि से सम्मानित किया। केवल कला में ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये 1988 से 1994 तक कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे तथा 1994 से 1999 तक ये न केवल कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे बल्कि इस दौरान कर्नाटक के मंत्रिमंडल में बतौर बेंगलुरु विकास

0: मंत्री कार्य भी किया। चाहे मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा हो या न्यू वेव सिनेमा, दोनों ही क्षेत्रों में कार्य कर इन्होंने अपनी अभिनय परिपक्वता का प्रमाण दिया। आज भारत सरकार भारतीय सिनेमा में इनके अप्रतिम योगदान के लिए इन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर रही है।
1: Request Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu to confer Dada Saheb Phalke Award for the year 2024 upon Sri Anant Nag, and I now invite Sri Anant Nag to come forward and receive the highest and the most distinguished recognition in Indian cinema. Let's put our hands together as we give a standing ovation to Sri Anant Nag Ji, for the artist who is recognized for more than five decades of natural performances, from landmark parallel cinema classics to beloved Kannada comedies and nuanced later roles. Sri Anant Nag has enriched Indian cinema with rare versatility, grace and humanity. Ladies and gentlemen, Sri Anant Nag getting Dada Saheb Phalke Award for the year 2024.
2: Karkal Dhwani ke saath Abhinandan Bharatiya cinema ke atyant sammanit aur lokpriya kalakar ka jinhone विभिन्न भाषाओं में अपनी विशिष्ट कला साधना से देश की विविध सिनेमाई परंपराओं को समृद्ध किया, जिनकी सादगी में गरिमा, सहजता में प्रभाव और प्रत्येक भावाभिव्यक्ति में असाधारण गहराई दिखाई देती है। अपनी बहुआयामी प्रतिभा और स्मरणीय प्रस्तुतियों से भारतीय सिनेमा की विरासत को गौरवान्वित करने वाले श्री अनंत नाग जी।
1: Shaped by the stage and fluent across languages as we learnt, Sri Anant Nag moved effortlessly between art house and mainstream cinema, bringing wit, warmth and quiet depth to every character he played.
2: और अब मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
1: And many congratulations and good wishes to you, Sri Anant Nag sir, for the honor. We are all eager to hear from you. Would you kindly come and share your thoughts with us?

0: परम सम्मानीय श्री अनंतनाथ जी, आपके आत्मीय उद्गारों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर आपको पुनः हार्दिक बधाई। भारतीय सिनेमा में आपका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कर्तव्य ध्वनि से आइए एक बार पुनः करें श्री अनंतनाथ जी का हृदय से अभिनंदन। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी,
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभागीय सचिव श्री चंचल कुमार जी, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। मुझे पुरस्कार विजेताओं से बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। आप सभी पुरस्कार विजेताओं से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी टीम के उन सभी सदस्यों तक भी मेरी सराहना अवश्य पहुँचाए जिनके योगदान से आपकी पुरस्कृत फिल्म का निर्माण संभव हुआ।

मैं अनंत नाग को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। बहुत छोटी उम्र से ही और रंगमंच के प्रख्यात लोगों के साथ जुड़ गए थे। अपने पहले नाटक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख भूमिका निभाई और दूसरी नाटक में गौतम बुद्ध की। फिल्म में उनका अभिनय थिएटर और सिनेमा के श्रेष्ठ आयामों का समन्वय प्रस्तुत करता है। फिल्मों का गंभीर अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि उनका अभिनय सहज यानी नेचुरल, संयत यानी रिस्ट्रेंड और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक होता है और कलाकारों को भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। देवियों और सज्जन, यहाँ एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को तथा उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में हम भारत को के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। 550 से अधिक रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने स्वाधीन भारत की एकता का समीचित सुनिश्चित किया था। एकता नगर का ये क्षेत्र भी एक रियासत का हिस्सा था। विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्रों और आकार देने वाले सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ शोभायमान है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत परिकल्पना को जाता है। आज पुरस्कृत फिल्मों में स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक भी शामिल है। देवियों और सज्जन, आज पुरस्कृत फिल्मों का एक संक्षिप्त विवरण मुझे दिया गया है। इन फिल्मों के बारे में जानकर मैं आप सबके योगदान से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं आप सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीयता के एक विशेष अध्याय को उजागर करने वाली फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये फिल्म देश की एकता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और उनके समाधान का जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सुश्री यामी गौतम धौर की मैं विशेष सराहना करती हूँ। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म भंगार जीवन और मृत्यु सार्थकता और निरर्थकता के जुड़े अनदेखा आयामों में अभिव्यक्ति करती है। ऐसे असाधारण विषय पर हृदयस्पर्शी फिल्म बनाने के लिए मैं निर्माता निर्देशक सुश्री समीरा राय और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री मम्मूटी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत करने का अवसर मुझे मिला था। देवियों और सज्जनों, वर्ष 1970 में वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर भारत के इस महान सपूतों की स्मृति ने एक डाक टिकट जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हवाई अड्डे को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। आज पुरस्कृत फिल्मों में शामिल सांतोनियो वीर सावरकर

और उनकी असाधारण जीवन गाथा के प्रति एक कलात्मक श्रद्धांजलि है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री रणदीप हुड्डा को मैं बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जीवन गाथा बहुत प्रेरक होती है। मैं मानती हूँ कि ऐसे प्रेरक व्यक्तियों पर बायोपिक बनाना बहुत

0: बावजूद अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर वर्ष 1972 में वे पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने थे। वर्ष 2018 में श्री पाटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके चरित्र को अपने अभिनय से जीवंत बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कार्तिक आर्यन को मैं बधाई देती। भक्षक नामक फिल्म महिला सुरक्षा के अत्यंत गंभीर विषय पर समाज को जागरूक करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। इस विषय की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए फिल्म की पूरी टीम को मैं विशेष साधुवाद करती हूँ। संताली फिल्म आंगेन के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से एक उत्कृष्ट फिल्म को तो प्रोत्साहित मिल ही रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिला है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए पुरस्कृत श्री रविराज मुर्मू को मैं बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म को पुरस्कृत करना तथा बाल कलाकारों को पुरस्कार देना देश के भविष्य में कलात्मक निवेश है। इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल कलाकारों आतिश सेट्टी, अरुण देव पथुला, रिद्धान बनर्जी, तपमय देव एवं गीताश्री चक्रवर्ती को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में उल्लेखनीय है, परंतु समय की सीमा के कारण मैं कुछ फिल्मों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले। मैंने पिछले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये अनुरोध किया था कि पूरी टीम के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मेरे इन अनुरोधों पर ध्यान देते होंगे। देवी और स्वजनों, जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं, तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं। देश में बन रहे अच्छे फिल्मों के बारे में जानकर मेरा ये विश्वास और दृढ़ता है कि हमारी फिल्में गुणवत्ता यानी क्वालिटी के विश्व स्तरीय प्रतिमान बनाएगी। मैं आप सबके और फिल्म उद्योग के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: Thank you, Honorable President. Let us all rise for the national song and the national anthem.

0: हमने कलाकारों के चेहरों पर उपलब्धि की मुस्कान देखी और हमारे कानों में अब भी कुछ देर पहले गूंजती तालियों की आवाज है। आज हमने यहाँ पुरस्कारों का वितरण ही नहीं देखा, हमने सपनों को सम्मानित होते देखा, हमने मेहनत को मंच पर आते देखा, हमने भारत की अनेक भाषाओं को एक साथ तालियां बजाते देखा और शायद इसी को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है। अब मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।
1: अभी आप एकता नगर के

0: Biz Ayçi ile Bora.
1: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त हैं अभिनव कुंशी और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट. और आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है वो यही रहेगी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत को एशियन गेम्स के अंदर इस वर्ष उसका पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है. जी हाँ, द गोल्ड मेडल हैज फाइनली कम टू इंडिया थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हु वेंट ऑन to defeat Sri Lanka today by a huge margin of 147 runs. India, who won the toss pehle, chose to bat first and batting karte hue Bhartiya team ne 216 run banaye unke nirdharit 20 overs mein, jisko Sri Lanka jab chase karne aaya to unki puri team simat gayi sirf 69 runs mein. And this goes to show that this has also been one of the biggest defeats that India has churned out to an opposition when it comes to the margin of runs. Jisse aaj Bharat ne Sri Lanka ko haraya hai. Abhinav, a very proud moment for every Indian.
2: It's a glorious moment aur bahut hi garv hai hum sab Bhartiyon ko. आज हमारी इंडियन वुमेन्स टीम एशिया कप भी जीता और आज एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और याद दिलाएं ब्रॉन्ज मेडल गया पाकिस्तान को जिन्होंने हराया बांग्लादेश को. और आज लग रहा है कि थीम है इंडिया को श्रीलंका को हराने का, क्योंकि हॉकी में इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से हराया. इंडियन मेंस टीम आज तो पूरी तरह फायर पे थी क्योंकि जुगराज के 4 गोल, अभिषेक और दिलप्रीत की हैट्रिक और हरमनप्रीत के 2 गोल की वजह से इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली अपना मैच जीता 16-1. इंडोनेशिया को हराया था 13-1 और अब 16-1, तो लग रहा है हॉकी टीम सीधा करेक्ट पाथ पे जा रही है.
1: इंडीड, हॉकी टीम करेक्ट पाथ पे जा रही है. उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भी थी और अच्छा लगता है देखकर कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी हमारी आशाओं पर खरा उतर रहे हैं. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुशु की दुनिया से भी. आज एक बहुत अच्छी बड़ी ताजी खबर आ रही है, विच इज दैट इन भारत की वुशु स्टार जिसको हम कहते हैं रोशिबिना देवी assured herself of a third successive Asian Games medal after storming into the women's Sanda 60 kg semi-finals with a 5-0 victory over Macau, China's Chu Mansin. Aaj ke din. Well, the semi-final berth guarantees Roshibina at least a bronze medal in the ongoing Asian Games 2026. Aur aapko ye bata de ki Roshibina Devi jo hai wo pehle bhi Bharat ki ek bahut कहते हैं जगमगाता हुआ स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रह चुकी है. वो ऐसा सितारा है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं बिकॉज ये वही शख्सियत है, ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया हुआ है 2018 में और सिल्वर मेडल भी दिलवाया हुआ है 2023 में. और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष उनका सफर एक पायदान ऊपर ही जाए अभिनव. And she goes on to get the gold for us, also for our country.
2: Of course, Roshibina Devi making India proud. Unfortunately, Aryan, jinhone koshish kari thi apne quarter final match mein, wo apna match

0: हारे 2-1 नहीं तो वो भी प्रवेश करते सेमीफाइनल्स में, गारंटीड होता इंडिया को एक ब्रॉन्ज, गारंटी तो इंडिया को ब्रॉन्ज होता अगर इंडियन विमेन्स टीम हरा पाती टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल टीम्स इवेंट में नॉर्थ कोरिया को, मगर वो नहीं हो पाया। तीन सिंगल्स मैचेस हुए, तीनों में क्लीन स्वीप करा नॉर्थ कोरिया ने, श्रीजाकुला यशप्रीत गुरपड़े और दिया चतले तीनों को हार का सामना करा। मेंस टीम को याद दिलाएं आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया से हारे 3-0, सो डिसअपॉइंटिंग डे इन टेबल टेनिस।
1: Right, and somehow that disappointment also seeped into the world of gymnastics, because gymnastics mein agar hum kahe to a slight correction over there, did not seep into the world of gymnastics. Hota gymnastics ki taraf ek choti si khushkhabri aapko deti hu filhal ke liye, which is that Praniti Nair qualified for the world finals in artistic gymnastics with the score of 12.916. ji ha, Praniti Nair jo Bharat ki taraf se representation rakhi hai gymnastics ki duniya mein, ab dekhna hoga kyunki unko final mein apni jagah wo bana chuki hai, ki wahan से क्या वो इस सफर को एक कदम और आगे ले जाती है और भारत को मेडल दिला के लाती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए कुछ खबर यही है कि प्रणति नायक भी क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड फाइनल्स के अंदर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में विद अ स्कोर ऑफ 12.916 का बना।
0: और अगर हम कल की बात करें तो एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल्स की बरसात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि 6:15 एक्शन में होंगी या मनु भाकर और आईएस रुचि एंड ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट। एंड उसके बाद हमारे पास एक और गोल्ड का मौका है, क्योंकि 10 बजे आने वाली है मीराबाई चानू एंड साक्षी, आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी मीराबाई चानू गेट हर एशियन Games medal, which she's desperate for.
1: Yes, I am. I'm definitely looking forward to that. And the good thing is that I should hopefully be covering that, and we'll be looking forward to the medals going up tomorrow. लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे पास 6:30 बजे शाम के अपडेट्स में इतनी ही आपके लिए खबर थी। शाम को 7:30 बजे एक घंटे बाद फिर आपसे एक बार आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे और लेके आएंगे आपके लिए दिन का रैपअप और ऑल्सो ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द प्रीव्यू फॉर टुमारोज इवेंट्स। गुड बाय फॉर नाउ।
2: आई जी ने बोला।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: प्यार भरे नगमे,

उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा। आसपा पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। प्यार भरे नगमे में आज चैनिका के साथ आप लोग जुड़े हैं तो बात करेंगे चांद की। चांद एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शय है इस पूरी कायनात में जिसको अलग अलग तरह की उपमाएं दी गई। कभी उसे मामा कहा गया, कभी कहा गया प्रियतम का मुखड़ा, तो कभी टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा, और कभी चांद से शिकायत की गई तो कभी चांद की कसम खाई गई। न जाने किस किस तरीके से चांद को अपने जीवन में, अपने प्यार वाले रिश्तों में हमने बार बार शामिल किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में प्यार भरे गीतों के साथ, नगमों के साथ चांद का क्या रिश्ता है, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला गीत, जिसे कहते ना कि एकदम परफेक्ट गाना, परफेक्ट शुरुआत इस कार्यक्रम को जिसने दी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, चौदहवीं का चांद फिल्म से ये गाना हमने सुना। फिल्म का टाइटल ट्रैक था और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। जैसे कि मैंने कहा, संगीतकार गीतकार के बारे में भी तो बात होनी चाहिए। तो रवि का संगीत था और शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था। एक और मोहम्मद रफ़ी नंबर आप सबके लिए यहाँ पर सुनाना लाजमी है। और रोमांस की जब बात होती है तो जो रोमांस के राजा रहे हिंदी फिल्मों के, उनकी फिल्म का गाना है। झूमते डोलते इतराते इस गाने में, बस हमको देखना है उनको। जब जब ये गाना सुनते हैं तो लगता है कि बस उनको देखना है स्क्रीन पर। नाम है उनका देवानंद। काला बाजार का ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र और सचिन देव बर्मन का संगीत है। चलिए सुनते हैं गाना और याद कीजिए आप भी इस गाने के पिक्चराइजेशन को। आपका मन जो है वो झूम उठेगा। सुनते रहें।

हरे नगमे। दो गाने मोहम्मद रफी की आवाज में कार्यक्रम की शुरुआत में एकदम कहते हैं आगाज बहुत ही खूबसूरत अगर हो तो फिर अंजाम जो है वो भी हसीन ही होता है। और जहां तक सवाल है ये चांद वाले जो गाने हैं इनका, तो मोहम्मद रफ़ी की लगता है कि मतलब उनकी मोनोपोली थी। बहुत सारे गाने उन्होंने ऐसे गाए हैं जहां चांद का जिक्र है, रोमांटिक वाले गाने।

और किशोर कुमार की अगर हम बात करें तो वो भी पीछे नहीं है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में सभी लगभग पुराने दिनों से लेकर नए दिनों तक के जो गायक गायिकाएं हैं उनके गाने शामिल करने की मैं कोशिश करूंगी। घंटा भर है हमारे पास, इसलिए अभी फिलहाल मोहम्मद रफ़ी के बाद थोड़ा सा मूड बदले और किशोर कुमार की आवाज़ आपके लिए, लता मंगेशकर के साथ बेहद खूबसूरत सा गाना है और इतनी गज़ब की योडलिंग है इस गाने में कि बस क्या ही कहा जाए। शोरिल चौधरी का संगीत, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है। हाफ टिकट फिल्म से ये गाना आप सबकी नज़र करती हूँ।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

अरे इस तरह से अगर कोई जाने को कहे तो फिर कोई जा सकता है क्या? बस वो तो कहने के लिए है कि ठीक है, जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन जाने वाला ये सुनकर कभी जा नहीं पाएगा। वो रुक जरूर जाएगा, और रुकने की जरूरत भी तो है, क्योंकि ये जो दिल के रिश्ते हैं ये बनाना बहुत मुश्किल और तोड़ना बहुत ही आसान। आसानी से टूट जाएं, लेकिन फिर टूटने के बाद दिल का क्या हश्र हो? इसलिए किसी एक चीज को बनाने में जो मेहनत लगती है, उस मेहनत का फल भी तो मिले। यानी अगर दिल के रिश्ते बनते हैं तो उनको जोड़े रखने का जो दायित्व है वो भी तो हमारा ही है ना। तो इसी बात पर एक और खूबसूरत गाना मुझे लगता है कि आपको सुनवाना ही चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, मोहम्मद रफ़ी की मोनोपोली है चांद वाले गानों पर, लेकिन बीच बीच में किशोर कुमार का थोड़ा सा पंच भी तो ज़रूरी है। अभी भी हम लोग पुराने गीतों की तरफ ही हैं, धीरे धीरे आएंगे सामने सारे के सारे गाने। वैसे एकदम ब्रांड न्यू गाने तो आज के इस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं करने वाली, लेकिन वो गाने जो चांद के साथ इस तरह से जुड़े हैं या इस तरह से फिल्म में उसका इस्तेमाल किया उस गीत का, वही वाले गाने

0: Well, Ken, it's time for the Asian Games 2026 updates.
1: Asian Games 2026 IG는 뭐야?
2: Welcome to the Asian Games update from Aichi Nagoya. And my name is Abhinav Punchi. And of course, today is a gold medal day because India has finally struck gold thanks to the Indian women's cricket team. They played outstandingly well against Sri Lanka in the final. Aur kya dhamakedar batting kari thi. 216 run banaye. With Smriti Mandana top scoring with 79 runs. Uske jawab mein Sri Lanka were all out. And for just a very, very average score of 69 aur India ko jeet mili 147 runs se. Shandar jeet aur hamari Indian women's team ne apna title defend kara hai aur gold mila hai India ko. Aur is gold ki wajah se India jo 18th position mein the, ab 8th position mein ja chuki hai medals tally mein with one gold and of course total of 7 medals as well, 4 silvers and 2 bronze. Also, good news coming for India from the badminton circuit, a stunning victory 3-0 versus Japan in the men's team competition. Ab India apne pravesh kare semi-finals mein, aur semi-finals mein agar ab jate hain men's team badminton mein, to you are guaranteed a bronze medal. And semi-finals mein pravesh Roshibina Devi ne bhi kara hai Wushu Sando mein. Unhone apna quarter-final match jeeta with the points difference aur ab wo bhi guaranteed a bronze. Yaad dilai Roshibina Devi ne silver medal jeeta tha Hangzhou Asian Games mein aur 2018 mein bronze medal jeeta tha. तो अगर कल की बात करी जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर डे क्योंकि सुबह 5:30 बजे ही जय मीना का सॉफ्ट टेनिस का क्वार्टर फाइनल मैच है और अगर जय मीना प्रवेश करते सेमीफाइनल्स में ही इज गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल एंड देन उसके बाद शूटिंग में सबको इंतजार था एवरीबॉडी हैज बीन वेटिंग फॉर मनु भाकर एंड हर शूटिंग बडीज टू कम एंड टेक टू द शूटिंग रेंज क्योंकि मनु भाकर ईशा सिंह और आईएस सुरुचि विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस टीम और इंडिविजुअल इवेंट में है उसके बाद शूटिंग के स्कीट का भी थर्ड एंड फाइनल डे है मेंस एंड विमेंस इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स एंड देन वी हैव द बिग वन 10 AM मीराबाई चानू शी वांट्स गोल्ड कभी एशियन गेम्स में उन्होंने नहीं जीता है मेडल और उनको चाहिए वेट लिफ्टिंग के 49 kg में एक मेडल एंड ऑफकोर्स हमने बात की थी कुछ देर पहले बैडमिंटन के बारे में और 11:30 बजे होगा इंडिया वर्सेस चाइना जी हाँ ये वही मैच है जो फाइनल था पिछली बारी और इंडिया हारी थी वो फाइनल सिल्वर मेडल मिला था इंडिया को मगर इस बारी इंडिया क्या चाइना को हरा पाएगी क्या फाइनल में प्रवेश कर पाएगी क्योंकि सामना उनका अगर जीतेंगी सेमीफाइनल करेगी इंडोनेशिया या थाईलैंड ऑल्सो आपको याद दिलाएं कल कबड्डी एक्शन भी है इंडिया वर्सेज ईरान एट 8:30 AM 9:45 AM इंडिया वर्सेज बांग्लादेश मेन्स कबड्डी एंड एक और बड़ा गोल्ड मेडल मैच है अगर आप सुबह उठेंगे तो प्लीज 6:30 बजे इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग टीम को प्लीज चेयर करना बिकॉज उनके पास मौका है गोल्ड लाने का और आज मेंस हॉकी टीम ने तो श्रीलंका की धुनाई कर दी जी हाँ 16-1 का स्कोर था आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया इन द फर्स्ट मैच 13-1 द मेंस हॉकी टीम वेंट बेटर एंड बीट श्रीलंका 16-1 जी आज का थीम ऑफ द डे है श्रीलंका को हराना विमेंस क्रिकेट टीम ने करा और मेंस हॉकी टीम ने भी करा तो कल क्या इंडियन विमेंस टीम थाईलैंड को हरा पाएंगी 11:30 AM होगा इंडिया और थाईलैंड का वो हॉकी मैच एंड हमने आपको मीराबाई चानू के बारे में तो बताया ही वेट लिफ्टिंग में ऑल्सो ज्ञानेश्वरी यादव इज इन एक्शन इन द विमेंस 53 kg बाउट दैट्स एट 11:30 AM सो इट्स एन एक्शन पैक डे फॉर इंडिया एंड दे विल बी होपिंग दैट सम मोर मेडल्स कम इंडियाज वे टुमारो बिकॉज टुडे वी हैव स्ट्रक गोल्ड और आईची नगोया से

0: एशियन गेम्स में अब इंडिया आगे बढ़ा है एंड होपफुली दे कीप ऑन गोइंग द राइट डे. ऑफ कोर्स देयर वर डिसअपॉइंटमेंट्स. टेबल टेनिस टीम्स, इंडियन वुमेन्स टीम क्वार्टर फाइनल्स में हारे नॉर्थ कोरिया के साथ खिलाफ एंड प्री क्वार्टर फाइनल में इंडियन मेंस टीम को हारना पड़ा साउथ कोरिया के खिलाफ. सो दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर द टेबल टेनिस कंटेंजेंट. द दे विल बी होपिंग दैट टुमारो द इंडियन कंटेंजेंट पुट्स ऑन अ फैंटास्टिक शो एंड डज वेल, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हमारी क्रिकेट टीम ने दी है. ऑफकोर्स याद दिलाई बॉक्सिंग से भी गुड न्यूज आई थी. जादूमणि सिंह ने हराया था चंद्र बहादुर थापा को, वो एडवांस कर चुके हैं राउंड ऑफ 16 में. सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम बॉक्सिंग विद जादूमणि सिंह ऑफकोर्स, एंड वी आर होपिंग मच मोर बेटर न्यूज. वील बी बैक विद इट टुमारो एज वेल. और याद दिलाएं 10 बजे आपको सारा डिटेल रिपोर्ट आएंगे आज जो एशियन गेम्स में हुआ. सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर दैट. दैट्स ऑल फ्रॉम मी अभिनव पुंछी. इट्स बीन अ फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया. होपिंग फॉर मच मोर डेज लाइक दिस अहेड. And that's all. Keep watching and keep listening to Akashvani for more updates.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: You are listening. वापस लौटे हैं हम लेकर ताजा अपडेट्स आईजी नगोया से. एशियन गेम्स 2026 में अपने फेवरेट खिलाड़ियों को प्लीज रूट कीजिए, उनके लिए बहुत सारी दुआएं मांगिए कि मेडल जीते वो, अपने देश का नाम रोशन करें. और फिलहाल यहाँ पर एफएम रेनबो कोलकाता पर चैनिका प्यार भरे नगमे लेकर वापस आ गई है. 6 लोग सुन रहे हैं आप और हमने 2 गीत आपको बैक टू बैक सुनवाए, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. दिले नादान फिल्म से किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में चांदनी रात में ये गीत हमने सुना. नक्श लियालपुरी ने ये गाना लिखा था और संगीतकार थे खयाम. और उसके बाद हमने सुना मैंने पूछा चांद से अब्दुल्ला फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज. गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार राहुल देव बर्मन थे. और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और रुक करते कुछ बात की दौर के सिंगर्स की तरफ. अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सबके लिए बागी फिल्म का ये गाना. याद है ना आज हम चांद की बातें कर रहे हैं.

हरे नगमे। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। आज हो रही है चांद की बातें प्यार भरे नगमे के अंतर्गत। छह लोग सुन रहे हैं आप चैनिका के साथ। 7:41 और 30 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में सही समय। और बागी फिल्म का ये गीत हमने सुना, आनंद मिलिंद का संगीत है और समीर ने इस गीत को लिखा है। और अब एक आइकॉनिक गाना आपको मैं सुनवाती हूँ, AR रहमान का संगीत और आवाज हरिहरन साधना सरगम की। और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने। कौन सा गाना है गेस कीजिएगा, गेस कीजिए, गाना सुनिए, फिल्म का नाम उसके बाद बताती हूँ। सुन रहे हैं आप प्यार भरे नगमे ओनली ऑन छह लोग के फिल्म रेनबो कोलकाता।

सपने फिल्म का ये गाना सचमुच आइकॉनिक है ना। आप भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे। जब ये गाना रिलीज हुआ, जब फिल्म आई, फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस गाने ने एक अपना अलग दर्जा हासिल किया, अलग मकाम हासिल किया। आज भी जब इसे सुनते हैं तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। और इतनी खूबसूरती से इस गाने को पिक्चराइज किया, प्रभुदेवा काजोल के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, जैसे एक ड्रीमी एक सीक्वेंस। और चांद को इतनी खूबसूरती से एक मतलब पार्टनर बना लेना, हम दो हैं हमारे साथ चांद भी है, ये जो एक फीलिंग इस गाने में बार बार सामने आती है अल्फाजों के माध्यम से, और म्यूज़िक तो खैर है ही लाजवाब। तो ये गाना सच में बहुत स्पेशल है जब हम चांद वाले गीतों की बात करते हैं तब। और अगला जो गाना है उसके लिए चंद अल्फाज, मैं बताऊंगी नहीं कौन से फिल्म का गीत है, बस ये कहना चाहती हूँ कि वो चांद कह के गया था कि आज निकलेगा, वो चांद कह के गया था कि आज निकलेगा, तो इंतजार में बैठा हूँ शाम से मैं।

भरे नगमे। एमएम क्रीम का संगीत, आनंद बख्शी का गीत, फिल्म का नाम जख्मों, और मैं चाहती थी कि ये गाना आप सुने इससे पहले कि मैं इस गाने की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। ये भी एक आइकॉनिक गाना अपने आप में, चांद को इतनी खूबसूरती से बयां किया गया है। और चांद जब आता है गली में, जब घर के छज्जे से या खिड़की से या छत से मुंडेर से चांद दिख जाए, तो जैसी फीलिंग होती है उस तरह से आपका जो प्रिय है उसके आपको दर्शन मिल जाए, दोनों को किस तरह से जोड़ा गया है। बहुत ही उम्दा गीत। और चैनिका, अब इससे पहले कि और ज़्यादा इमोशनल हो जाए, चांद की गोलाई में, उसकी खूबसूरती में, उसकी गहराई में खो जाए, ये पहला घंटा समेटूंगी विनोद राठौड़, अलका याग्निक की आवाज़ के साथ आप सबके लिए। बाजीगर फिल्म का ये गाना, जमीर काजमी ने इस गीत को लिखा है और अनु मलिक ने संगीत दिया है। बाजीगर का ये गीत थोड़ा सा जुदा इसलिए है क्योंकि आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद ये गीत आपको नज़र ना आए, सुनाई ना दे, लेकिन रेडियो पर मैंने कई दफ़ा इसे बजाया है। तो चलिए चलते चलते ये गाना आपकी नज़र कर जाती हूँ आप लोग, लेकिन छायालोक पर बने रहिएगा, प्रीति आएगी 8:02 पर, और उससे पहले सुनेंगे समाचार। सुनते रहें, साथ रहें, FM रेनबो, खुल खाता, प्यार भरे नगमे लेकर चैनिका आई थी।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर आप सभी का स्वागत करती है। आपकी दोस्त प्रीति लेकर आई है कार्यक्रम छायालोक। दिन भर, बिल्कुल जी हाँ, दिन भर हम दुनिया के लिए जीते हैं, लेकिन ये जो शाम का ढलता हुआ पहर होता है ना, सिर्फ हमारा, जी हाँ बिल्कुल सिर्फ हमारा अपना होता है। और इसी अपनेपन को सूरों की चाशनी में घोलने हाजिर हो गई हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त प्रीति। आपके और हमारे बीच बस एक रेडियो वेव का एक फ्रिक्वेंसी है, जो आप सभी को पता है 107 मेगाहर्ट्ज, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, जहाँ हर रंग में धड़कती है आपकी और हमारी कहानी। चलिए इस शाम के कैनवास पर पहला रंग भरते हैं इस सदाबहार गीत के साथ।

107 MHz पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति, और आप हम तक पहुँच सकते हैं। हमारा नंबर है 2213-1341। ये नंबर डायल करके आप अपनी फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं। बट एक बात बताऊँ, जब मैं आकाशवाणी आ रही थी ना, तो रास्ते में दो लोगों को बातें करते हुए सुना, और वो किस बात पे उनमें बहस हो रही थी वो आप सुनना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर, है ना। मैं उन लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी चाय सबसे बेहतर होती है, अदरक वाली या फिर इलायची वाली। मुझे लगा कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ कुछ चाय जैसी ही तो है, है ना। कभी शक्कर ज़्यादा तो कभी पत्ती तेज, लेकिन हर घूंट में एक अलग ही मज़ा। हम अक्सर ज़िंदगी में हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की होड़ में इतना उलझ जाते हैं कि जो पल हाथ में है उसका स्वाद लेना भूल जाते हैं। अभी आप हमसे जुड़ेंगे ना अपनी फरमाइश लेकर, तब उसके साथ मेरे एक सवाल का भी जवाब देते जाइएगा कि आज दिन भर में कौन सा छोटा सा पल जिसने आपके चेहरे पर बिना किसी वजह के एक छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे पर ला दी। बस इतनी सी बात बतानी है आपको, वो कुछ भी हो सकती है। आप ऑफिस में गए हैं, वहाँ किसी ने आपकी छोटी सी तारीफ कर दी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, या बड़े हैंडसम लग रहे हो आज तो। ये डायलॉग अगर आपको कहीं तारीफ कहीं सुनने मिली हो, या फिर आपके चेहरे पे तो ऑब्वियसली मुस्कान तो आएगी, या फिर किसी पुराने दोस्त का अचानक से एक मैसेज आ गया, या फिर सड़क किनारे किसी नटखट से बिल्ली को आपने देख लिया और चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो इसी तरह की कोई भी वजह हो सकती है मुस्कान आने के लिए, बस तलाशने भर की देरी है। तो चले आइए हमारे पास, हमारा नंबर है 2213-1341, डायल करिए और जुड़ जाइए हम तक।

0: चलिए अब देख लेते कि हमारे साथ कौन है और वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
1: हाँ हम पूर्व वर्धमान बुधपुर से प्रवीर कुमार मंडल।
0: हाँ प्रवीर जी बताइए, मैंने एक सवाल किया था कि आज आप सारा दिन भर बहुत सारा काम किए होंगे, है ना? तो उस काम के बीच में एक छोटी सी स्माइल तो आई ही होगी आपके चेहरे पे, राइट? तो वो किस कारण आ गई?
1: देखिए मैडम जी, आपका मैंने मेरा बीबी हम बाजार करके लाए तो उस टाइम आने के बाद ही मेरे को चाय बोलना नहीं पड़ा, चाय दे दिया।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो ये चाय पत्ती रोक के, चीनी रोक के, मलाई मार के चाय हमको बना के दिया था।
0: चलिए बिन मांगे आपको चाय मिल गई, कितने खुश नसीब है ना आप।
1: इसमें बहुत आनंद आया।
0: ओके।
1: मन में मैंने हंसी भी आया, इसीलिए आपसे प्यार कर दिया मैडम।
0: थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप इतने खुश नसीब है कि आपको बिन मांगे सब चीज मिल जाती है ना, बहुत खुश नसीब है। चलिए तो आप इस खुश नसीबी को संभाल कर रखिएगा, आपकी फरमा आप बिन मांगे आपको मिल जा रही है बात चाहे तो आप भी उनकी इज्जत करिए और उनको संभाल कर रखिएगा, है ना
1: मैडम जी। हाँ जी, वो गाना सुना दीजिए, शोले फिल्म का।
0: बिल्कुल, चलिए आपकी फरमाइश पर हम जरूर सुनाएंगे। कि जिंदगी में वैसे भी रिश्ते बहुत बनते हैं साहब, पर दोस्त वो इकलौता रिश्ता होता है ना जो हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो जो आपकी बेकूफियों पर भी हंसता भी बहुत सबसे पहले है और मुसीबत में सामने ढाल बन कर भी खड़ा भी वो सबसे पहले होता है। अगर इस वक्त आपके ज़िंदगी में भी कोई ऐसा जय या वीरू है जिसे याद करके चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो उन्हीं के गाना ज़रूर सुनाइएगा।

0: चलिए अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग प्रीति।
0: गुड इवनिंग, बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं मुनीरुद्दीन बोल रहा हूँ, गोदोक्षिण सांसद हावड़ा से।
0: हाँ जी, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म से आंखों में है क्या तस्वीर तेरा।
0: ओके चलिए, ओके बिल्कुल। तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम सुनाते हैं आपको ये गीत। सही में वैसे भी 90 के दशक का वो दौर भी क्या कमाल का था ना, जब दिल की बातें कहने के लिए इमोजी या फिर चैट्स नहीं, बस आंखों के इशारे ही काफी हुआ करते थे। और जब बात हो किसी की कातिलाना निगाहों की, तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर इन आंखों में है क्या। अगर आज शाम आपका दिल भी किसी की एक नजर पर फिदा होने के मूड में है, तो वॉल्यूम जरा बढ़ा ही लीजिए और सुन लीजिए ब्लॉकबस्टर गीत।

107 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। अब एक जरूरी सूचना, 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा अर्थात ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in और adbgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा या अर्थात ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212061 या फिर 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत या फिर पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विविध मामलों या नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: वक्त तो चला है 8:41 और 7 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या, बताइए कौन बोल रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए।
1: जी बिलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: शुभजीत, चलिए ये बताइए, सबसे पहले तो हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग सारा दिन इतना काम करते हैं कि हम लोग सही में रियल में ऐसा ही हो गया है कि हम लोग मुस्कुराना तक भूल गए। हंसना तो दूर की बात, हम लोग मुस्कुराना तक भूल गए हैं। तो आज ऐसा कुछ पल, ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी में आया आज कि अपने एक पल के लिए ही मुस्कुराया हूँ, ऐसा कुछ
1: होता है जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ दिन में? एक्चुअली मेरा लेट ऑफिस है।
0: ओके।
1: और होता है कि वर्क फ्रॉम होम कुछ दिन रहता है और ऑफलाइन भी कुछ, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है।
0: ओके।
1: तो जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ ऑन द वे टू ऑफिस,
0: ओके,
1: मुझे एक चीज देख के बहुत संतुष्टि होती है।
0: हाँ जी।
1: कि सड़क पर जो रहने वाले बच्चे,
0: हाँ जी,
1: हमेशा मैं एक स्पॉट है जहाँ से मैं गुजरता हूँ तो वहाँ पर हर दिन देखता हूँ उसी टाइम के आसपास छोटे छोटे बच्चे, शायद 5 साल या 4 साल से लेके एकदम 10-11 तक, अच्छे बच्चे एकदम इधर उधर भटक रहे हैं, खेल रहे हैं और वो खुश हैं। मुझे ताज्जुब लगता है कि खुश कैसे हैं, क्योंकि हम लोग जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया, सब दिया, खाने के लिए फूड दिया, तो सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल झगड़ते हैं,
0: बिल्कुल, मतलब हमारी चाहत कभी खत्म ही नहीं होती है और की चाहत हमारी बढ़ती रहती है। अगर हमारे पास एक एप्पल है तो हमें लगता है कि अरे एक से क्या होगा, एक से थोड़ी पेट भरने वाला है, एक और मिल जाए तो और बेटर हो, पर जिनके पास कुछ है ही नहीं,
1: पूरा परिवार चला देता
0: है। हाँ बिल्कुल, और जिनके पास कुछ है ही नहीं तो उनके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो उनके पास जो है उसी में उन लोग खुश रहना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही।
1: और जब मैं देखता हूँ ना जो झोपड़ी में, जैसे सड़क में झोपड़ी कुछ बना के वो लोग जो खाना बनाते हैं, सिर्फ चावल उबाल रहे हैं, उसी को लेके मतलब नींबू के साथ कुछ भी करके खा रहे हैं, तो तकलीफ तो होता है,
0: लेकिन
1: इसमें उन लोग को देख के लगता है अरे उन लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है।
0: हाँ हाँ,
1: मतलब वो ढल चुके हैं और वो लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो वो तो ये है। सबक है हम सब का।
0: सबक तो है पर किया ही किया जा सकता है, उनका उनका जो, हाँ उनके जो कर्म है वो कर्म किए जा रहे हैं, हमारे जो कर्म है हम अपने कर्म किए जा रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, हम लोग नौकरी पर जा रहे हैं तो उसके कर्म का फल हमें मिल रहा है, वो जो कर्म कर रहे हैं उन्हें वो फल मिल रहा है, तो खुशी तलाशनी पड़ती है, राइट? अगर वो उसने छोटे कम में भी उन लोग अगर
1: खुल
0: तलाश रहे हैं तो हमें भी तलाश लेनी चाहिए, बट आजकल क्या हो रहा है, हम खुशी तलाशते ही नहीं है, हम सिर्फ खुशी कहाँ तलाश रहे हैं, सिर्फ मोबाइल में, क्योंकि जहाँ चलो मोबाइल में एक रील देख लिया, चलो खुशी हो गए, उसी में हंस लिया।
1: ऐसा ही हो रहा है, अगर खुशी लेना मतलब कुछ पाना है तो देख लो मिल।
0: हाँ एकदम एकदम। चलिए बताइए आप कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: राजू बन गया जेंटलमैन से तू मेरे साथ साथ।
0: बिल्कुल, तो चलिए आपको आपकी

फरमाइश पर हम ज़रूर ये गीत सुनाएंगे और साथ में एक बात भी कहेंगे कि जब जेब में पैसे कम हो लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने हो, जैसे उन्होंने कहा, उनका वक्त अगर बिना कोई किसी शर्त के साथ आपका हाथ थाम ले और कहे, बस सिंपल सी एक छोटी सी बात कहें कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। और शाहरुख खान की वो शुरुआती मासूमियत, जूही चावला की दिलकश सादगी और अदा, जतिन ललित का वो जादुई संगीत, क्या कहने। अगर इस सफर ज़िंदगी में आपके पास भी कोई ऐसा हम सफ़र है जो हर धूप छाँव में आपके कदमों से कदमे मिलाकर चलता है, तो ये गाना सीधा उन्हें सुनाई दीजिए, है ना।

0: चलिए देख लेते हैं कि आज कौन आए हमारे साथ. और अब हेलो.
1: हेलो नमस्ते, मैं बरगद से गिरजापुकुर पर हावड़ा से प्रशांत धोक बोल रहा हूँ.
0: हाँ प्रशांत जी, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मुझे हर दिन जो प्यार करेगा फिल्म से अनु मलिक का घाव हुआ.
0: हाँ जी,
1: गरम चाय की प्याली हो.
0: बिल्कुल, तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं अनु मलिक और उनके साथियों की आवाज में हर दिल जो प्यार करेगा से एक गरम चाय की प्याली. हो जाए.

सच्ची जब संगीत अच्छा हो और साथ में आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोता हो तो वक्त पंख लगा कर उड़ ही जाता है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही है कि जाने का भी वक्त हो चला है, तो जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं उनसे मेरी खास गुजारिश है कि ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करिए, सीट बेल्ट बांधे रखिए और हॉर्न का इस्तेमाल केवल ज़रूरत पड़ने पर ही कीजिए। जल्दी घर पहुँचने से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित घर पहुँचना, क्योंकि कोई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और आज शाम चलते चलते बस एक छोटी सी बात दिल में आई, कह दूँ वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए हर लम्हे को खुलकर जिए, शिकायतें कम करें और खुशियाँ बांटती रहें। इसी के साथ प्रीति आप सभी से कहती है टाटा बाय, फिर मुलाकात होगी। इसी तरह से सुनते रहें, साथ रहें।

0: के बाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पणती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं, दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
1: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
0: हॉकी की भी यही कहानी है। वहाँ गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
1: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
0: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं, उनका वजन भी बढ़ गया है। लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा।

0: सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास। लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया, शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा and the same story repeated. Jadumani dominated the fight and eventually was hailed as the better boxer on all five cards. He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarter finals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचु का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
0: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान वेयर पीवी सिंधु डिस्पाइट हैविंग वन द फर्स्ट गेम वेंट ऑन टू लूज द नेक्स्ट टू अकाने यामागुची। इन द नेक्स्ट मैच उन्नति हुडा ऑफ इंडिया लॉस टू तोमोका मियाजाकी। द थर्ड मैच वॉज प्लेड बिटवीन त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद ऑफ इंडिया हु बीट Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match, because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
0: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, there North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jineppa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
0: TT और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कम्प्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, thereby completely outplaying his opponent.
0: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
1: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरुमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरुमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
0: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: आर्यन नेहरा वॉज इन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
0: फिर शूटिंग में दो सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एलावलिन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रहीं।
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एलावलिन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश फोर्थ इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
0: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
1: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ, और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा। लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।